धन गुरु अमरदास जी महाराज ऐसी ब्रिद मूर्ति हन जिन्हां दे जीवन दी छाप जगत नूं ए उपदेश देंदी है कि उम्र दे किसे भी हिस्से विच मनुख नूं निराश नहीं होना चाहिदा, चाहे शरीर बुढ़ा भी हो गया बिरद भी हो गया पर मनुख दे अंदर अगर उत्साह है, उमंग है, आशा है तो बहुत वड्डे वड्डे कम उस अवस्था दे च भी हो सकदे ने जदकि अक्सर बुढ़े पिछलोकी निराशा दे खड़ दे च जा गिरदे ने। धन गुरु अमरदास जी महाराज दा जन्म पिंड बासर के जिला अमृतसर माता लक्ष्मी जी दी कुखों पिता तेजभान दे घर दे च होया। आप जी का जन्म विसाख सुदी 14-1526 विच होया। आप जी की संतान मोहरी जी, मोहन जी ते दो पुत्रियां दानी जी, भानी जी, ए आप जी का ग्रस्थी जीवन सी। बच्चियां देच, परिवार देच, घर ग्रस्थी देच आप जीवन इस ढंग का बतीत कर रहे सन जैसे के पानी विच रहिंदा होया कमल। लेकिन फिर भी एक धू अंदर बनी रहिंदी सी कि परम आनंद वो जो समाधि है वो नसीब होवे। कहिंदे ने आपने इसी इच्छा नु मुख रख के थां थां ते तीर्थां दा विरटन कीता और अक्सर गाहे बगाहे हरिद्वार भी जांदे सन। एक दिन गंगा देच इशनान करके ठंड दे दिन सन रेत देच बैठे चरना नू पसार के पैर पसार के एक पांदा जो इल्मे निजूम देच माहिर सी ज्योतिषी सी लंघिया। उदी निगाह पसरे हुए चरना ते पै गई और उसने मत्था टेकया। धन गुरु अमरदास जी महाराज ने रोकया, आख्या ब्राह्मण देवता मैं ते खत्री हां, तू ब्राह्मण है, कुल करके जात करके तू उच्चा है, मैनू क्यों मत्था टेकया। तो ब्राह्मण हथ जोड़ के कहन लगा, महाराज थोड़े चरणा दिच पदम है, ये पदम ते किसे ब्रह्म ज्ञानी दे चरणा दिच होंदा है, ये पदम ते किसे पहुंची हुई रूह दे चरणा च होंदा है, थोड़े कदमा दिच पदम। तां गुरु अमरदास जी महाराज बड़ी रूहानी मुस्कुराहट च कहन लगे, ब्राह्मण देवता मैं ते एक यात्री हां, बिल्कुल यात्री। ओ ब्राह्मण कहन लगा, महाराज ये बीज अजे अंकुरित नहीं होएगा, होया ये होण वाला है, और जदों ये बीज अंकुरित होवे है मैनू भुलना नहीं, मैं थोड़े चरणा च आवांगा, मैं थोड़े दर्शन करने लई फिर आवांगा। रब दी नेत गुरु अंगद देव जी महाराज दी पुत्री बीबी अमरो आप दे भतीजे नू व्याई गई। इस तरीके नाल गुरु

धन गुरु अंगद देव जी महाराज दी है, दूसरे गुरु नानक और वो मेरे पिता ने, रिश्ते देच मेरे पिता ने, हैं थड़े पिता ने, नाम जरूर सुनिया सी और व्याह दे समेच कुड़माचारियां दा जैसे मिलाप होंदा है ए भी जरूर होया, लेकिन खिच ते आखिर शब्द तो पेंदी है। अगर कालियां घटावां सूरज दे अगों भी आ जान तो एक दफा पृथ्वी ते अंधकार हो जांदा है। ए गल वखरा है कि सूरज दे च अनेरा नहीं, सूरज दे च अंधकार नहीं, पर सूरज दा चानना, सूरज दा प्रकाश सही मैने धरती ते पहुंच सके कालियां घटावां रोक ते खड़ी कर देंदियां ने। तो कुड़माचारी, रिश्तेदारी, शरीकाचारी और समाजिक रिश्ते, संसार दियां परंपरावां इतनियां निक्कियां वड्डियां बदलियां सन, जिन्हां दे चों गुरु अमरदास जी महाराज नूं झांकण दा मौका ही ना मिलिया कि गुरु अंगद देव जी महाराज वकत दे ओ रूहानी सूरज ने जो चारों पासे चानना वंड रहे ने। पर अज जद उस सूरज दी एक किरण कन्ना दे च पई, शब्द ते आखिर कन्ना च ही पएगा और सुनिया अपनी नूह राणी तो, तां दर्शना लई चल पै। श्रीक दे ते कुड़माचारी है और फिर आप पुत्र वाले ने, बेटे वाले ने, जदके गुरु अंगद देव जी महाराज पुत्री वाले सन। आखिर भारतीय परंपरा दे मुताबक लड़की वाले अक्सर अपने आप नूं निर्माणता दे च रखदे ने, गरीबी च रखदे ने, और हमेशा लड़के वाले स्वय अभिमान दे नाल आंदे ने, माण ताण दे नाल आंदे ने। पर अज कुछ रूहानी दुनिया दी झलक ने उल्टी गंगा चला दित्ती। अज लड़के वालियां दा सरप्रस्त मुखी बिरद बाबा अमरदास, गुरु अंगद देव जी महाराज दे दर्शना लई चले है, रिश्ते च कुड़माचारी है। खंडूर साहब आके जद दीदार कीते, भरी संगत दिच गुरु अंगद देव जी महाराज दे मुखार बिंद तो जद अमृतमई बचन सुने, तो जिस ढंग नाल किन्ने ने सिर झुकदा है, झुकाया नहीं जांदा, स्वभाव की झुक गया, कदमा ते डिग पे डंडौत कीती ते हथ जोड़ के बेनती कीती, गुरुदेव इस कुड़माचारी दे रिश्ते नूं मैं एक पासे करदा, मैं अज तो आप दा सेवक, आप दा सिख। और वाकई आपने मैनूं कबूल कीता है सेवक दे रूप च, तां जरूर कोई सेवा भी बख्शो, मैं सेवा भी करा। हुण इक ते बिरद शरीर गालवन 70 तों उच्ची टपी हुई अवस्था, बिरद शरीर पर उत्साह बड़ा है, उमंग बड़ी है। गुरु अंगद देव जी महाराज ने हां कर दी, ठीक है सेवक दे रूप दे तुसी कबूल, सानू अमृत वेले इशनान करा दिता करो, रोज दी सेवा। हुण ब्यासा अद्धी रात नूं उठदे ने, सिर ते गागर रखदे ने और आप जांदे ने, पहले स्वयं इशनान करदे ने, फिर गागर नूं ब्यासा दे जल नाल भर के सिर ते रखदे ने। ए भरी होई गागर जद चुक के बिरद बाबा गुरु अंगद देव जी महाराज दे मार्ग ते चलदा है, ते इंज जापदा है जिवें त्रिलोकी दा भार इस बिरद बाबे ने चुके होया है, जिवें समूह संसार दी जिम्मेवारी इस बाबे ने चुकी हुई है। बाद दे च वाकई आप दे किरदार राही, आप दे प्रचार राही ये सब कुछ प्रगट भी होया। इस सेवा आपने कोई एक दिन नहीं की थी,

ऐसी बख्शिश भरी मूर्ति जे ना आउंदी ते देश दी ए हालत अज नहीं आउणी सी। भाव ए जो संस्कृति बची हुई है देश दी, ए गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा सदका, उना दी रहमत दा सदका, उना दी बख्शिश दा सदका। आप दा आगमन भाई साहब भाई नंद लाल दे लफ्जां च बहार दा आगमन है, मौसमे बहार दा आगमन, बाहोश बाश के हंगामे नौ बहार आमद। साडे देश दीआं छे रुतुआं दे चों बहार दी रुत रुतुआं दा राजा है, सिरमौर महान है। क्यों? मौसमे बहार दे च गर्मी इतनी जितनी सहन हो सके ते ठंड भी इतनी है जितनी के बर्दाश्त हो सके। फुल खिड़दे ने मौसमे बहार दे च, बहुती गर्मी होवे ते गर्मी नाल फुल झुलस जांदे ने, पर जे बहुती ठंड होवे, कक्कर पै रहे होवे, पाला पै रहे होवे, तां फुल मुरझा जांदे ने, नहीं पैदा होंदे। तो गल स्पष्ट है कि बर्फ पै रही है फुल नहीं पैदा होंगे, लू चल रही है फुल झुलस जाएंगे। फुल्लां नूं खेड़े लई, फुल्लां दी उत्पत्ति लई मौसमे बहार चाहिए है। जो बहुत गर्म है वो जालम हो जाएगा, जो बहुत ठंडा है वो बुजदिल हो जाएगा। देश दे जो संघर्ष सी वो इस तरह दा सी कि एक पासे एक जालम सी बहुत गर्म सी बहुत गर्म सी, दूसरे पासे एक बुजदिल सी बहुत ठंडा सी बहुत ठंडा सी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जिस हालसे नूं जन्म दिता आखिया तुसी बहार दी तरह होना है, ना इतना गर्म कि जने खने दी पग लाओ, ना इतने ठंडे कि जना खना थोड़ी पग ला छटे। मौसम बहार बाहोश बाश के हंगाम में नव बहार आमद, बहार आमद यार आमद करार आमद। भाई साहब भाई नंद लाल कहने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी आमद मौसम बहार दी आमद है। आपने देशवासियों नवी सेध दिती और आखिया जद मजबूर हो जाओ लाचार हो जाओ ता शस्त्र चुकना भी धर्म है। चूंकारज हमा हिलते दरगुलस्त हलालस्त बुरदम बशमशीर दस्त। जद वकत दे सताधारियां ने आपनु ए आखिया कि आप संत हो गुरु हो फकीर हो, फकीर दा शस्त्रधारी होना ठीक नहीं, ता आपने फरमान कीता बलाचारगी दरम्या आमदम बतदबीरो तीरो तुफंग आमदम। मैं लाचार होके शस्त्र चुके है, बंदूक चुकी है, मजबूर हो जा। ऐ सताधारियो थोड़े ते ज्ञान दा विचार दा शांति दा खिमा दा असर नहीं पया, मैनू मजबूरन शस्त्र चुकना पया। तो ए वाक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अमर वाक ने चूंकार हवा हिलते दरगुजस्त हलालस्त बुरदम बशमशीर दस्त। साडे देश दे एक प्रसिद्ध कवि दा कहना है, ऐ मां जे तू बच्चे नूं जन्म देना है वो सूरमा होवे, जे सूरमा नहीं ता भगत होवे, जे भगत नहीं ता कम से कम दानी ता जरूर होवे। जननी जने ता भगत जन कह दाता कह सूर, नहीं ता जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। आदकाल तो ये विचारधारा बनी हुई है वे जिन्हां ने जगत नू तामीर कीता है, जगत नू कुछ दिता है, दानिया ने कुछ दिता है, सूरमिया ने कुछ दिता है, भगता ने कुछ दिता है। इस वास्ते आख्या गया ऐ मां अगर तू भगत नहीं पैदा कर सकती, दाता नहीं पैदा कर सकती, सूरमा नहीं पैदा कर सकती, तो फिर तेरा बांझ रहना ही बेहतर है। वाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ऐसा पूर्ण पुरख जो दाता भी है, भगत भी है, सूरमा भी है। सूरमा ऐसा कि लखां दी फौज दा घेरा पिया होवे हौसला पस्त नहीं हुंदा, हौसले नाल आप लड़दे ने। इन्ने महान महाबली और आपने ही ऐसा कह दिता
سوا لاکھ سے ایک

नानक नारायण। धार्मिक दुनिया विच काम एक ऐसा विषय है, एक ऐसा प्रकरण है, एक ऐसा मजमून है जो अछूता है, जिसते बहुपक्षी विचार नहीं हुई। जे किधरे हुई है इशारतन, खुल के नहीं हुई। जे किधरे हुई भी है दबे हुए अल्फाजां च, खुले शब्दां दे च नहीं। उसका एक कारण भी दिखाई देंदा है। मनुख दा लोभ बार प्रगट होंदा है और बार भी वो कृत है। धन दी पकड़, पदार्थां दी पकड़ और उस लई भज दौड़ दिखाई दे जांदी है। क्रोधातुर मनुख दा क्रोध भी एक ऐसी कृत है जो बार किसे ते प्रगट होंदा है, दिखाई दे जांदा है। ये ते इस वक्त क्रोध दे जी रहे है। अहंकार बोलां दे राही, तरह तरह दी कृत दे राही प्रगट हो जांदा है, दृश्यमान है। काम एक अंदरूनी वेग है, एक अंदरूनी बिरति है, एक अंदर दा उछाल है। शायद ये कृत भी अंदरूनी बन गई, पर्दे विच बन गई। क्रोध कृत प्रगट है, लोभ कृत प्रगट है, अहंकार प्रदर्शित होता है, लेकिन काम पर्दे दे चाहता है, छुप के आता है। इस कृत नु सब तो छुपाया जाता है, हर एक तो छुपाया जाता है। शायद इसे वास्ते काम दी कोई खुल के चर्चा नहीं हुई। इस दे संबंध विच महापुरुषा ने खुल के कुछ लिखिया भी नहीं है। लिखे हुए ग्रंथ मिलते ने क्रोध दे उते, लोभ ते, अहंकार ते, मोह ते, लेकिन ए विषय बड़े बड़े सतपुरुषां दी कलम तो भी अछूता रह गया। और मूल कारण यही दिखाई देंदा है कि काम कृत मनुख सरेआम नहीं करता है। ये गल वखरी है कि पशु सरेआम कर देने, पंछी सरेआम कर देने और इस कृत नू दिनदिश कर देने, जबकि मनुख ने इस कृत नू रात लई चुने है। पढ़दा ते फिर रात दा पढ़दा, छुप के फिर रात दा अंधकार। यही कारण है कि इस दी विचार भी किधरे होई है बहुत तारीकी देच, बहुत पर्दियां देच, बहुत छुप छुप के होई है। क्रोध दी चर्चा मनुख सरेआम करता है, अहंकार दी गल भी सरेआम करता है। बहस मुबासे देच मोह दा भी जिक्र आम चलता है, लेकिन काम इस दी विचारधारा, इस दी चर्चा, इस दा बहस मुबासा भी करन लई मनुख किसे विशेष थां नूं चुणदा है और विशेष व्यक्ति नूं चुणदा है। हर एक दे सामने इस दी चर्चा करन लग्या भी संकोच करदा है, छुपांदा है इस विचार नूं। और यही कारण है चाहे राजनीतिक दुनिया है, चाहे सामाजिक दुनिया है, चाहे धार्मिक दुनिया है, हर विषय ते विचार होइए, यही एक विषय है जो अछूता रह गया। जे प्रातन कुछ ऋषियां ने, जैसे के वात्सायन, कोका पंडित इत्यादिक ने काम सूत्र लिखे,
ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਲਿਖੇ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੱਸੇ, ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦੱਸੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਲੇਖਣੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਲੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਖੇ ਕਿ ਲੋਭੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਦਾ ਔਰ ਲੋਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਭੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਵਾਤਸਾਇਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਕਾ ਪੰਡਿਤ ਨੇ, ਕਾਮ ਸੂਰਤ ਸੂਤਰ ਜੋ ਲਿਖੇ ਹੈ ਕਾਮ ਉਭਾਰਨ ਲਈ, ਕਾਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਮੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਕੋਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਤਸਾਇਨ ਦੇ ਕਾਮ ਸੂਤਰ ਜਾਂ ਕੋਕਾ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਕਾਮ ਸ਼ਾਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਰਹਿ ਗਏ, ਔਰ ਅਤਿਅੰਤ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਅਛੂਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਛੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਾਮ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦ ਕਾਮ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੈ, ਕਾਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਾਮ ਰਹੇ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਨਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਨਮ ਕਾਮ ਹੈ, ਕਾਮ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਅਧਿਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਮ ਕਾਮ ਜੀਵਨ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਜੀਵਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਲਾਂਜਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਮ ਅਨੰਤ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਭਟਕ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ। ਆਪ ਸਾਫ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਕਾਮ ਨਰਕ ਬਿਸਰਾਮ ਬਹੁ ਜਾਉਣੀ ਭਰਮਾਵਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਜਨਮ ਕਾਮ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਮ ਦੀ ਅੰਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
जैसे मां बाप तो शरीर आया है तो शरीर दे मां बाप की अंश मौजूद है। मां की रकत पिता बिन धारा, पातशाहिंद भी फरमान करते ने, पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी। पिता दा मैला पानी, मां दी लाल मिट्टी, माटी गोरी गेरवी लाल, इस माटी की पुत्री जोरी। ए गेरवी लाल मिट्टी ते मैला पानी इस दी सहयोग दे नाल ए मनुखी तन दा पुतला बनिया। मिट्टी ते पानी दा मिश्रण कीता एक वेग ने जिसका नाम है काम। इस वेग ने मिट्टी ते पानी नू जोड़े है तो इस पुतले विच मिट्टी है पानी है वो वेग भी है। मां दा खून भी है पिता दा बिंद भी है इस काया विच, लेकिन काम दा वेग भी है जन्म तो ही। इस बिंद नू इस खून नू असी काया विचों कढ नहीं सकते, ते जिथे उस बिंद नू उस खून नू इस काया विचों नहीं कढ सकते तो काम नू भी नहीं कढ सकते, क्योंकि तिन्हां दे मिश्रण दे नाल ही ते काया दा ढांचा बनया है, ये पुतला बनया है। पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी। बड़ा सुंदर ये पुतला बनया। तो सतगुरु देव जी महाराज काम दे त्याग दा उपदेश नहीं दे रहे, इस उपदेश दे च है काम दे प्रति संयम। जैसे बकायदा आयुर्वेद ग्रंथ कहंदे ने भूख लगे खादा होया भोजन दारू है, औषधि है, अमृत है, पर भूख नहीं एक एक बुरकी पाई हुई ए रोग पैदा करेगी। शरीर की लोड़ नहीं तू दे रहे हैं। काम दा वेग शरीर की अधिक शक्ति है जो शरीर देच नहीं समा सकती, वो अधिक वेग पर बलवाशना बनता है, काम बनता है। इसका निकास सही ढंग नाल हो सके, संयममयी हो सके, बकायदा शिक्षा है दीक्षा है मर्यादा बनाई गई है। लेकिन काम शरीर का हिस्सा है, सोचनी का नहीं। आज दे समय देच काम चिंतन का हिस्सा बन गया है, काम सोचनी का हिस्सा बन गया है। शरीर देच ते है ये मन देच भी हो गया, चिंतन देच आ गया, सोचनी देच आ गया, विचारां देच आ गया। ता ही ते आज जितना साहित बाजार विच बिक रहा है, लोकी खरीद के पढ़ रहे ने, उस साहित्य काम ही काम है। साहित्यकारां दी कलम काम दे संबंध च लिख रही है। लासमी साहित्यकार काम बारे सोच रहे ने, काम दा चिंतन कर रहे ने, काम दे विचार उन्हां दे अंदर चल रहे ने, काम सोचनी बन गई है। किसे वक्त शायरे मशरिक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने आख्या सी, हिंद के शायर व सूरत गर अफसाना नवीस है, बिचारे के आजा पर औरत सवार। भावे उन्हें अपने देश की गल की थी, हिंद के शायर व सूरत गर अफसाना नवीस
ہے بیچارے کے اعضاء پر عورت سوار. یہ جو ناولسٹ نے کہانی کار نے یہ جو سنت راش نے یہ جو شاعر نے دارشک نے وچارک نے انہاں دے وچاراں وچ انہاں دی لیکھنی وچ انہاں دی چترکاری وچ انہاں دی سنگت راشی وچ کام ہی کام چھایا ہے. مانو کام تو بنا اور کچھ ہے ہی نہیں. سارا ساہت کام آشرت ہو گئے اور اسے ہی کہانیاں شاعری دے آدھار تے بنن والیاں فلماں کام دی پردرشت تصویر بن گئیاں. چاروں پاسے مانو کام ہی کام چھایا ہویا ہے. پوسٹر اشتہار فلماں میگزین شاعری سنتراشی تصویر سب کام دی نمائش بن کے رہ گئے. کام چنتن بن گیا, کام وچار بن گیا, کام سوچنی بن گیا, کام یاد بن گیا, کام رام بن گیا, کام پرماتما بن گیا. جدکہ چاہیدا تے ایسا سی کام نو رام بنا دے, لیکن کام ہی رام ہو گیا اور چاروں پاسے کام ہی منک دے دل دماغ تے چھا کے رہ گیا. کام ایک ایسا جذبہ اگر وچاراں چ آ جائے, سوچنی چ آ جائے, چنتن دے چ آ جائے تو کام گرسیا منک رام دا چنتن نہیں کر سکتا, نام دا سمرن نہیں کر سکتا. بھگت رویداس جی مہاراج فرمان کر دینے

लेकिन चारों पासे फाइव स्टार होटल भी ने, एयरपोर्ट भी है, खूब जांदे ने सैलानी और सैकड़े एकड़ विच फैले हुए इना मंदरां नू देखण लई। की है इना मंदरां विच? कोई कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, किसे संत दी मूर्ति दे दर्शन करन जा रहे ने, किसे अवतार दे चित्र दे दर्शन करन जा रहे ने, कता ही नहीं। उत्थे जो मूर्तियां ने वो काम दिया मूर्तियां ने, वासना दिया मूर्तियां ने, मनुख वेखण जा रहे है, मनुख दे अंदर दी वासना इसनु मजबूर कर रही है। एक कोणार्क जांदा है, जगन्नाथ पुरी दियां बार दियां तस्वीरां देखदा है और खजुराहे दे मंदर देखदा है। इस तो स्पष्ट होंदा है कि मनुख दे वासना दे वेग ने मंदर भी बनाए ते वासना दे बनाए, प्रार्थना दे नहीं, मंदर भी बनाए ते काम दे बनाए, राम दे नहीं। हुन इस सदी विच इस युग विच ते दिल दिमाग दते एक काम ही छा गया, हर पासे इसदी विचार इसदी प्रदर्शनी अखबारां विच, शायरी विच, फिल्मां विच, साहित्य विच, तरह तरह दियां तस्वीरां विच, और चारों पासे इतना काम दा प्रगटावा होवे, प्रचार होवे, तो कोई ध्यानी कोई साधक राम दा चिंतन करे इस युग विच कठिनाई है, अगर वो कर सके तो महान है। भगत रविदास जी महाराज नु इत्थे ही दुख तो के कहना पे है, तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल युग के कामी। इसी काम दे हड़ विच बह गया समुच्चा मगरिब, यूरोप, अमेरिका, कनाडा और बदकिस्मती है ये भारत जो सदियों तक धार्मिक देश रहे है और धर्म दी महिमा इत्थे बड़ी प्रगाढ़ रही है। अफसोस ए भी अज यूरोप दी नकल कर, मगरब दी नकल कर, पच्छम दी नकल कर, काम दे वेग दे बह गया, काम दे दलदल दे फस गया। और यही कारण है कि राम दा चिंतन घटदा गया घटदा गया। हुन मोची ते कदम कदम ते बैठे मिलदे ने जुतियां गंढण वाले, किसे रविदास दे दर्शन नहीं आंदे। कपड़े बुनण वाले ते बहुत मिलदे ने, कबीर दे दर्शन नहीं आंदे। नाई ते बहुते ने, सैन किथे, कपड़ियां नू रंगण वाले ते बहुते ने, पर नामदेव किथे, चेतने महाप्रभु ए किथे। हुन कोई मीरा एक तारा लेके भजन दिश डुबी होई नहीं दिखाई देंदी। हुन कोई माता भाग कौर सुरवीरता दी मूर्ति नहीं दिखाई देंदी। समूह जगत इसे ही वैण देच वह तो रहा है, इसे ही हड़ देच वह तो रहा है। और धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक देच इसी वेग दा जिक्र कर रहे ने। हे कामं नरक विश्रामं

तप रहने देना है, इतना चंचल कर देना है कि मनुख लई राम दा चिंतन कठिन हो जाता है, नहीं चल नाल जुड़ना कठिन हो जाता है। चंचल दा मतलब है चल चल चल, इतना चलाए मान कर देना है मन नु, वो जो नहीं चल है नहीं चलता, टिकया होया है, उस नाल टिकना उस नाल जुड़ना कठिन हो जाता है। और जीवन चंचलता दे वैण विच बह तुरदा है, अगम्मी महान मिलिया ए जीवन काम दी भेट हो जाता है। जदके जीवन मिलिया सी राम नू भेट करन लई, हो गया काम दी भेट। अगर काम प्रार्थना बन जाए तो राम प्रगट होंदा है, काम वासना बन जाए तो फिर जीवन काममय हो जाता है, काम दा रूप बन जाता है, वासना दा रूप बन जाता है। हे कामं नरक विश्रामं बहुजानी भरमावणे चित हरणं त्रैलोक गमं जप तप सील बिदारणे अलप सुख अवित चंचल

आन कर धर्म वधे नित रसना ते प्रभु दा नाम ले आइए उस सच नु सत नु रटन करिए उस विच मन जोड़िए धर्म पैदा हो जाता है। धर्म दा बूटा अंकुरित हो जाता है और परोपकार कीते हैं दान पुन कीते हैं धर्म दा ए बूटा सहज सहज वधदा है उठदा है। स्थित धर्म खिमा के संगा धर्म दा बूटा क्षमा दे आसरे दे टिकिया रहिंदा है। कोमल बूटे गिर ना जान ढह ना जान तूफानी हवावां उन्हां दियां जड़ां ना पुट देन तो सहारा देना पैंदा है कोमल बूटियां नूं किसे सोटी दा किसे दीवार दा। तो क्षमा दी सोटी नाल क्षमा दे सहारे खिमा दे सहारे ए धर्म दा बूटा रोज रोज वद्दा है उच्चा हुंदा है उच्चा हुंदा है। स्थिते धर्म खिमा के संगा धर्म क्रोध कर होत विभंगा छिन मात्र क्रोध कर दिया धर्म दा बूटा जल के खाक हो जाता है। क्रोध ऐसी अगन पता नहीं कितने दिनों की तपस्या नूं जला के रख देंदी है कितने दिनों की साधना कितने दिनों का परोपकार। वाकई अगर एक बूटा छे महीने साल सिंच के वड्डा कीता है बस एक चिंगारी उसनूं भस्म कर सकती है। क्रोध की छणक अगन छोटी जी अग्नि कीते किताए पैदा होए धर्म नूं नष्ट करके रख देंदी। क्रोध वास्तविक मूर्खता की बुनियाद ते खड़ा होंदा है। क्रोधी स्याणा नहीं हो सकता। क्रोध बारे कुछ होर जानकारियां इस तरह दियां ने। जर्मन दी गल है एक मां बच्चा ले आई है डॉक्टर को मुर्दा रोंदी हुई चीखदी हुई। डॉक्टर भी हैरान है जब ये मर ही चुके है ते मेरे को ल्याण दा मतलब जब ये खत्म ही हो गया है फिर ये रोंदी हुई इत्थे क्यों ले आई है। डॉक्टर कहिंदा इत्थे मुर्दा है रोंदी हुई बिलखदी हुई ममता दी मारी मांग कह रही है हां मर गया इत्थे ठीक है पर मैं इस वास्ते ले आई है क्यों मरया है किवें मरया है मैनू कुछ कारण नहीं दिखाई देंदा। अच्छा तो इस वास्ते ले आई है। डॉक्टर उस बच्चे नु वेखदा है अपनी सियाणप नाल जांच पड़ताल करदा है मां नु पुछदा है ए दस किवें गुजरिया कदों गुजरिया। बस मेरी गोद देसी मेरा दुध पींदियां ही पींदियां ए सिर सुट बैठा है खत्म हो गया। तो मतलब होया तेरा दुध पींदियां पींदियां मर गया। क्या दसेंगी जिस वक्त तू इस बच्चे नूं दुध पिला रही सी तेरी मनोदशा की सी तेरी मानसिक हालत की सी। ये मां कहंदी है मेरा ते पति नाल झगड़ा चल रहा सी बहुत उच्ची बोलचाल चल रही सी ये बच्चा विचकार रोन लग पया मैं इसनु दूध पिलाण लग पई
ਪਰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਉਬਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਉਬਲੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਬਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੰਢਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪਿਵਸਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਦਸ ਬੈਰਾਗਨ ਮੋਹੇ ਬਸ ਕੀਨੀ, ਪੰਚੋਂ ਕਾ ਮਿਟਨਾ।

अमृत वाणी घटते उच्चरो आत्म को समझाओ। ये दस इंद्रिय में काबूज कर लेने, पंज विषयां दा ते नामो निशान मिट गया है। वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार इन्हां दा नामो निशान ही मिट गया है, ये ते रहे ही नहीं। सत्तर दो भरे अमृत सर बिख को मार कड़ा। शरीर देच आयुर्वेद दी पद्धति दे मुताबक 72 मोटियां नाड़ा ने 72 जिन्हां विच खून वड्डे रूप दे गर्दिश करदा है और उस तो छोटियां छोटियां तंतुआं ते नसानों मिलदा है, लेकिन मूल रूप दे वड्डियां नाड़ा ए 72 ने। भगत जी कह रहे ने ए 72 नाड़ा इन्हां विच खून गर्दिश नहीं कर रहा, अमृत गर्दिश कर रहा है। मेरा खून खून नहीं रहा, अमृत हो गया है। और जब खून अमृत हो गया है तो बोल अमृतमयी हो गए। अमृत बाणी घटते उच्चरो आत्म को समझाओ। जे खून अमृत हो गया है तो दृष्टि अमृतमयी हो जाती है, बोल अमृतमयी हो जाते हैं, रोम रोम दे चो अमृत दियां तिरंगा निकल दियां ने। इसनू शायरे मशरिक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने बड़े आलमाना ढंग नाल इंज बयान कीता है। एक फूल गर चाहे तो गुलिस्तान बन जाए, इन बूंद गर चाहे तो तूफान बन जाए। एक फूल गर चाहे तो गुलिस्तान बन जाए, एक बूंद गर चाहे तो तूफान बन जाए। एक खून के कतरे में वो तासीर है, एक कौम की तवारीख का अनवान बन जाए।

कौन कह दे रहे। आया थे मनुख भगवान होने लिए, पर क्रोध करके शैतान बन जाता है। हर वक्त धनवाद करन लई बड़ी भारी सियाणप चाहिए। थोड़ा सोच, तू छोटा सी मासूम बालक सी, परमात्मा मां बन के तेरा मददगार बने हैं, पिता बन के तेरा सहायक बने हैं। एक गोद दे चुके तेनू खिडांदी रही, एक कंधे दे ऊपर चुक के तेनू लड़ांदा रहा। देखते सही ए मां ए पिता किते भगवान ते नहीं। मात पिता सुत बंधप भाई, नानक होवा पार ब्रह्म सहाई। सतगुरां दी बाणी, हे प्रभु हे पार ब्रह्म, तू मां बन के मददगार बने है, तू पिता बन के सहायक बने है। शुक्र तेरा, शुक्र तेरा। आज बुढ़ा हो गया, बिरध हो गया, पुत्र पानी दा गिलास ले आया, पोतरा थाली देच रोटी लेके आ गया। बिरध भाया ऊपर साक सैन, मुख अपयायो बैठ को देन। बिरध हो गए साक संगबंदी, तेरे मुंह च ग्राइयां दे रहे, तेरे हद सब कुछ पकड़ा रहे ने। हे प्रभु इतो ही है, मात पिता सुत बंधप भाई। हुन सुत बनके, पुत बनके, पोतरा बनके तू मेरा मददगार बने हुए है। जद मैं छोटा सी तू मां बाप बनके मेरा मददगार बनया, जद मैं बुढ़ा हो गया कमजोर हो गया पुत्र बनके जवान पोतरा बनके तू मेरा मददगार होया। जरा सोचते सही ए सोचनी निर्माण बना देगी, ए सोचनी धनवाद नाल भर देगी, ए सोचनी प्रार्थना नाल भर देगी। ऐसी हालत दे च मनुख भगवान दा रूप हो जांदा है। पर गिले ने शिकवे ने मां ते गिले, प्यो ते गिले, पुत्र ते गिले, पोतरियां ते गिले, पड़ोसियां ते गिले, शहर वासियां ते गिले, सारे संसार ते गिले, फिर रब ते गिरे। इतना प्रबल क्रोध शैतान दा रूप हो गया। क्रोधी भूल के भी नहीं सोचदा शायद मेरा ही कसूर है, और शांतमई मनुख कदी अपने संताप लई दूजे नु दोषी ठहरांदा ही नहीं। वो ते साफ कह देंदा है, मुझ अवगुण सहनाई दोष, मेरा ही दोष है, मेरा ही कसूर है। ऐसी सोचनी निर्माण बना देंदी है, दूजियां दा कसूर है, दूजियां दी ज्यादती है, ऐसा क्रोध नाल भर देंदी है। और क्रोध दी अगन जिथे बल रही है उथे हरी बनस्पति किथे, उथे फुल किथे, उथे फल किथे। असी वेखदे हां बहुत लू चल रही है, धुप पै रही है, भयंकर गर्मी है, फुल मुरझा जांदे ने, नहीं खिड़दे, फुलां दे बूटे पैदा भी नहीं आउंदे। पर बर्फ पै रही है, कक्कर पै रहे है, पानी जम रहे ने, सीत लहर चल रही है, कोमल फुलां दे बूटे नहीं पैदा आउंदे, फुल नहीं खिड़दे। फुल उदों खिड़दे ने ना बहुती ठंड होवे ना बहुती गर्मी होवे। उस मौसम नू कहंदे ने मौसमे बहार, बसंत बहार, मौसमे बहार। फुल खिड़दे ने बहार दे, इतनी गर्मी है खिड़े लई मददगार हो रही है, ऐसी ठंड है खिड़े लई
सहायक हो रही है। ककर ते बर्फ दी तरह जमे होया मनुख ठंडा कायर होंदा है, बुजदिल होंदा है, उस सच दे पक्ष दे च नहीं खड़ा हो सकदा, सच बोल नहीं सकदा, शहादत दे नहीं सकदा सच दी। पर बहुत गर्म मनुख जालम होंदा है, दुष्ट होंदा है, हर एक नूं पैरां दे थले लिताड़दा है, कुचलदा है। तो जिथे खून विच बहुत गर्मी है, जीवन विच खेड़ा नहीं आउंदा। जिथे बहुत ठंडक है, उत्थे भी खेड़ा नहीं आउंदा। जैसे कि असी बाहर देखते हैं, जब बाहर जमीन ते लू चल रही है, धुप अग वरसा रही है, फुल नहीं खिड़ते, पर बाहर सीत लहर चल रही है, बर्फ पै रही है, फुल नहीं खिड़ते। महान संत कवि और धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे हजूरी कवि भाई साहब भाई नंदलाल इस दृश्य नूं अपने कीमती शब्दां विच बड़े सोहने ढंग नाल बयान करदे ने। असी बहुत गर्म जोनां दे चलंगे हां, शेर है, चीता है, बगयाड़ है, बाज है, इल है, कौवे ने, इस तरह दी बहुत गर्म जोनियां दे चलंगे हां, गर्म बनस्पति दे चो, गर्म सुभा दे पंछी, गर्म सुभा दे चौपाए, फिर ऐसिया च भी लंघिया बहुत ठंडे, बहुत ठंडे। लोमड़ी है, गिद्दड़ है, रेशम दे कीड़े ने, और इस तरह कुछ होर मासूम पंछी ने, बहुत ठंडे, बहुत ठंडे। कोई भी चावे हमला कर देवे, बहुत गर्म, बहुत गर्म। हर एक ते हमला करना और हर वक्त हमला करना, इस तरह दियां जोनां दे चों लंघ चुके हैं। भाई साहब कहंदे ने हुण ते मनुखा जन्म दी बहार आई है, ए मानुष तन, ए मनुखी जिंदगी, ए ते बहार है। ते जद बहार है तो फिर मनुख जिमें बहार दे च फुल खिड़दे ने, तू भी खिड़ जा, तू मुरझा ना, तू कुमला ना, तू खिड़। बड़े सुंदर बोलने हैं, बाहोश बाश

आ रहा हूं। सुन ऐ मोर राजन, मेरी करामात देख। मैं जिस हृदय च अपना पैर रख देना, वो अपना बिगड़दा होया कम भी नहीं देख सकेगा कि कितना बिगड़ रहा है, मेरा कितना नाश हो रहा है। वो अपनी आत्मा की आवाज भी नहीं सुन सकेगा। ऐ मोर राजन, तू मैनू भेज के देख। जिंदगी भर जो पड़े होवेगा, सालां बदी जो पड़े होवेगा, एक छिन विच मैं बुला के रख देंगा, अनपढ़ बना के रख देंगा। क्रोध दे सड़िया होया मनुख ते अनपढ़ लगता है, क्रोध दे जलिया होया मनुख ते मूढ़ लगता है, क्रोधी ते शैतान लगता है। नहीं महसूस होता कि पढ़ा लिखा होगा, ये दार्शनिक होगा, ये फिलोसफर होगा, ये चातर होगा। पढ़ो जितनो खिन माए बेसारो, जीवन भर जो इसने पढ़े है, मैं एक सैकंड दे भुला के रख देंगा, एक छिन दे भुला के रख देंगा। क्रोध दी ए महान परबल शक्ति जिसनु धन गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने पावन पवित्र वाक संस्कृति श्लोक विच इस तरह बयान करते हैं। हे कलमूल करोधं कदंच करुणा न उपरजते। हे कलेश दी जड़, झगड़े दा मूल क्रोध। झगड़ा चाहे परिवार दे चाहे, मूल क्रोध है। झगड़ा चाहे बाजार दे चाहे, मूल क्रोध है। झगड़ा चाहे सारे शहर दे चाहे कौम दे चाहे, मूल क्रोध है। ते झगड़ा चाहे सारे संसार दे चाहे, विश्व युद्ध है, वर्ल्ड वार है, मूल दे चाहे क्रोध है। हे झगड़े दी जड़, हे कलेश दा मूल, हे कल मूल करोधं कदंच

करोत जथा मरकटे। हे क्रोध तेरा वासा हुंदा है विषयी मनुखां दे अंदर, जिन्हां दी वासना अतृप्त रह गई है, जिन्हां दी कामना अतृप्त रह गई है, जिन्हां दी तृष्णा अतृप्त रह गई है, जिन्हां दीआं इच्छावां अतृप्त रह गईआं ने, जिन्हां दीआं कामनावां अतृप्त रह गईआं ने, तेरा वासा उत्थे ही आउंदा है। अतृप्त वासना क्रोध बनदी है, अतृप्त वासना गिले बनदी है, अतृप्त वासना शिकवे बनदी है, अतृप्त वासना असंतुष्टि नूं जन्म देंदी है, और ये सब कुछ फिर क्रोध नूं बर्बाद करदा है। ये क्रोध तेरा वासा है विषयी जीवां दे अंदर। नर्तन करोत जथा मरकटे। तू जिस दे अंदर वासा करदा है उसनू इस तरह नचांदा है जिवें मदारी बंदर नू नचांदा है। ए क्रोध तू बंदर दी तरह उस मनुख नू नचांदा है जिस दे अंदर तू प्रवेश कर जांदा है। अनेक सासन अनेक सासन ताड़न्ते जमदूते तव संगे अधमं नरे। जिस दे अंदर तेरा वासा हो जांदा है उसनू जमजूतां दी ताड़ना सारनी पैंदी है, बार बार जमना पैंदा है, मरना पैंदा है। हे क्रोध तव संगे अधमं नरे। अधम गति दे लोग तेरे नाल आउंदे ने, अधम मनुख नीच मनुख तेरे नाल आउंदे ने। क्रोधी महान नहीं हो सकदा, क्रोधी महानीच है, महानीच है। तो फिर इस तों बचाव किस तरह करिए, इस क्रोध तो किवें बचिए। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ए महान वाक सानू इंज उपदेश करदा है। आखरी पंक्ति

ईमान बेचना है, कथा बेचनी है, कीर्तन बेचना है। समा लंघ गया जब नजराने हैं, पेट आंदे सन, पेटा आंदी सी, नहीं मुल चाहिदा है। तो जब मुल चाहिदा है तो ज्ञान बिक गया, जब मुल चाहिदा है तो कीर्तन बिक गया, जब मुल चाहिदा है तो कथा बिक गई, जब मुल चाहिदा है तो धर्म बिक गया, सेवा बिक गई, ईमान बिक गया। मुल चाहिदा है, और जिसनु वड्डा मुल चाहिदा है, बेच देगा इज्जत, बेच देगा असमत, बेच देगा शराफत, बेच देगा अपना विश्वास, सब कुछ बेचेगा। वैश नाल धर्म नहीं चलता। श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई, धर्म की गत रही। अफसोस नाल धन गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे ने, सारी सृष्टि इंज कह लो बहु गिणती वैश हो गई है, धर्म व्यापक पद्धर ते नहीं चल रहा। ओया किसी एक कद मनुख नाल चल रहा है, हजारां च लखां च कोई एक कद, तो ये कोई बहुत गिणती नहीं। सारा संसार लोभी हो गया है, लोभी धार्मिक नहीं हो सकता, लोभी पुनीत नहीं हो सकता, लोभी पापी हो सकता है, पुनीत नहीं हो सकता, दानी पुनीत हो सकता है, लोभी पुनीत नहीं हो सकता। लोभी ते पापी है, दानी पुनीत है, लोभी पापी है। तो पाप व्यापक हो गया, पाप छा गया, पाप ग्रासी पृथ्वी, धौल खड़ा धर हेठ पुकारा। जब पापियां नाल धरती भर जाती है, भाव लोभिया नाल भर जाती है, तो एक दफा ते जमीन दे जर्रे भी पुकार उठते ने, हे प्रभु रहमत कर, बख्शिश कर, पापी ही पापी, पापी ही पापी। सब कुछ बेचण ले तैयार ने, और सब कुछ खरीदण दे खरीदार भी मौजूद ने। बाजार बन गया सारा संसार, बाजार बन गए मंदिर, बाजार बन गए धर्मस्थल, बाजार बन गए तीरथ। सनातन मत दा सिरमौर तीरथ बनारस शिवा ने वसाई सी, एक महान योगी ने, एक महान तपीश्वर ने। तपीश्वर पैदा होवन, संत पैदा होवन, जोगी पैदा होवन, ध्यानी पैदा होवन, ज्ञानी पैदा होवन, ये नगरी वसाई। पर इस नगरी विच लोभी आ गए, लोभी जिथे कठे हो जान, लोभी लंपट आंदा है, ठग आंदा है। लोभी दे अंदर अनेकां लहरां चलदियां ने लैण दियां, लिहाजा लोभी हर पासे लंपट पड़ा फैलांदा है। तदी ते मेरे पातशाह ने कहा, हे लोभा लंपट संग सिर मोरे, अनकलेरी कलोलते। लोभी स्वयं भ्रष्ट होंदा है, सब कुछ नु भ्रष्ट करके रख देंदा है। लोभी तीर्थां नु मंदरां नु बाजार बना के रख देंदा है, और बाजार दे ते ठगी चलदी है। बाजार ते ठगी दा चोली दामन दा जो है साथ है। ये लोभ इस दे कारण करके जीव पता नहीं कितनी थावां ते भरमदा है, भटकदा है, और उसका मन डोलदा है, और हर जगह नू भ्रष्ट करदा है। हर वक्त लैण दी बिरती, लैण दी बिरती, लैण दी बिरती। लोभी दे नाल हर वक्त बाजार चलदा है, बाजार विच मनुख कुछ लैण लई जांदा है। लेकिन लोभी नू ऐसा बाजार चाहिदा है, लेना ते सब कुछ है, और सब दे कोलो लेना है, बदले दिच देना कुछ भी नहीं, ऐसा बाजार चाहिदा है।

है लोभ, हे लोभ, तैनु मित्र दिवी शर्म नहीं, तो मित्र नाल भी ठगी कर दें। तेनु इष्ट तो भी संकोच नहीं, तो इष्ट नाल भी ठगी कर दें। तू संबंधियां तो भी शर्म नहीं खांदा, तो उना नाल भी ठगिया कर दें, उना नु भी धोखा देना है। नच मात पिता तव लज्जया, तेनु मां बाप दी भी लज्जा नहीं, तू ते उना नाल भी ठगी करदा है, तू ते उना नाल भी धोखा करदा है। पातशाह दा फरमान, लोभी का वेसाना कीजे जे का पार वसाए। लोभी ते भरोसा औखा है, और अज दे युग दे च चूंकि लोभ प्रबल है, प्रधान है, भरोसा उड़दा जा रहा है, उड़ गया है, या किधरे कोई भरोसा करदा है, विश्वासघात हुंदा है, उस दे भरोसे नूं बहुत वड्डी सट लगदी है। लोभी नूं मेरे पातशाह ने कुत्ते नाल कूकर नाल तशबीह दित्ती है।

भख अभख सब खाए। लोभी ते कुत्ते दी तरह है, हर थां ते मुंह मारना, हर वक्त मुंह मारना, क्रंग विच मुंह मारना, हड्डी विच जो है मुंह मारना, और दूजे ने मुंह मारना देना, दूजे ते भौंकना, ये लोभी दी मनोवृत्ति है। इसका एक सुंदर चित्रण धन गुरु नानक देव जी महाराज ने श्री राग दे एक शब्द विच बड़े सुंदर ढंग नाल कीता है। एक स्वान दोए स्वानी नाल भल

करतार, हे करतार, धाणक हो गया। धाणक जो शमशान घाट पिच बैठ के उड़ीक कर देने कदों कोई लाश आवे, कफन मिले, भांडे मिलन, पैसे मिलन, कदों कोई लाश आवे, साडियां लकड़ियां बिकन, कदों लाश आवे, सानू मेहनताना मिले, साजो समिग्री मिले, जिसदी उपजीविका, जिसदी रोजी, जिसदी उड़ीक किसी दी मौत ते खड़ी है, और जो सवेरे तो लेके शाम तक, रात तक इसे उड़ीक च रहे, कोई मुर्दा आवे, कोई मुर्दा आवे, कोई मुर्दा आवे, ऐसे मनुख दी रूह भी मुर्दा हो जाती है, ऐसे मनुख दा इखलाक भी मुर्दा हो जाता है, ऐसे मनुख दा आचरण भी मुर्दा हो जाता है। शेख सादी ने एक बड़ी सुंदर कविता, शायरी गुलिस्तान विच कीती है। फरमान है उन्हां दा, गर इंसाफ पुरसी बद अख्तर कस अस्त, मैथो इंसाफ दी गल पुछो, बद बख्त कौन है, बद किस्मत कौन है, कि दर राह तश रंज दीगर कस अस्त, जिस दी राहत दूजियां दी रंज ते खड़ी है, जिस दियां खुशियां दूजियां दे रोने ते खड़ियां ने, जो दूजियां दी बर्बादी विचों आबादी लभदा है, जो दूजियां दी मौत विचों जिंदगी लभदा है, जो दूजियां दे नुकसान विचों नफा लभदा है, जो दूजियां दी बेइज्जती विचों इज्जत लभदा है, जो दूजियां दे रोने दे चों हासे लभदा है, इते बड़ा बदबख्त, बड़ा बदबख्त, सारा दिन ए उड़ीक होवे, ए सोचनी होवे, मरे किसे घर विच कोई मनुख, मौत होवे किसे दी, खत्म होवे कोई, लाश आवे, मैनू कपड़े मिलन, मैनू साजो समिकरी मिले, मैनू धन मिले, इस तरह दी सोचनी इखलाक दा पतन कर देंदी है। ठीक है, अगर ये पेशा है, धंधा है किसे दा, पर सोचनी विच ना ले आवे, उपजीविका प्रभु ते सुटे, सेवा दे रूप विच करे, सोचे परमात्मा दी तरफों यही मेरी ड्यूटी लगी है, तो ये सारी सेवा करदे होया उहदी उपजीविका ते चलेगी, पर उसका इखलाकी पतन नहीं आवेगा, उसकी मनोवृत्ति थल्ले नहीं जाएगी। पर ओही सर्व धाणक नहीं जो शमशान घाट विच बैठ के सारा दिन मुर्दियां की उड़ीक करता है, ते किसे घर विच मौत होवे इसकी उड़ीक करता है, नहीं, सारा संसार ही लोभियां ने शमशान घाट बना के रख दिता है, और खुद बैठा है धाणक दी तरह, कोई मरे मैनू कुछ मिले, कोई तबाह होवे मैनू कुछ मिले, मैनू कुछ मिलना चाहिदा है, हुंदा है दूजा तबाह ते होवे, मेरे पल्ले कुछ पैना चाहिदा है, खोया जांदा सब दा ते खोया जान दो। इस तरह हर मनुख धाणक बन गया, और हर मनुख ने संसार नूं शमशान घाट बना के रख दिता। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस नूं इस ढंग नाल भी बयान किया है, एक स्वान दोए स्वानी नाल, भलके भौंके सदा बयान। एक कुत्ता, दो कुतियां, मनुख जैसे सवेरे उठता है, इहदे नाल उठ बैठदियां ने,
भौंकदा है कुत्ता, भौंकदियां ने एक कुतियां। रात नू जद सौं जांदा है वक्ती तौर ते एक कुत्ता ते कुतियां शांत होंदियां ने, पर होंदियां इस दे कोल ने। जैसे सवेरे उठदा है कुत्ता भी उठ बैठा, कुतियां भी उठ बैठियां, जोर दा भौंकना आरंभ कर दिता। इस भौंकण दे मनुख इतना बेजार होना है, मजा ले दी जबान तो वाहिगुरु निकले, राम निकले, अल्लाह निकले, मजा ले जपजी साहब पढ़े, ये मंदिर दी सुरत लवे गीता पढ़े, या नमाज पढ़े, ते कुरान दी तलावत करे, नहीं मुश्किल है। कौन है कुत्ता? लोभ। कौन ने दो कुतियां? आसा ते तृष्णा। थोड़ा जिया लोभ कुत्ता चुप होंदा है, आसा ते तृष्णा, तृष्णा जो मिल गया उसदी तृप्ति नहीं, तृष्णा ते आसा, ये दोवें इतनिया जोर दियां भौंकदियां ने कि वक्ती तौर ते चुप कीते उस कुत्ते नू, उस लोभ नू नाल भौंकना पैंदा है, और पूरी उच्ची आवाज दे भौंकना पैंदा है। तो जब लोग ऐसा भौंकना शुरू करे, आशा ते तृष्णा भी भौंकण, ये कल्ला मनुख की करे, ये फिर की करदा है? धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, कूड़ छोरा मुठा मुरदार। झूठ दे छुरे नाल मुरदार नू जबा करदा है। मुरदार और झूठ दा छुरा, प्रथम ते समझांगे, जानना चाहांगे मुरदार की है। मुरदार गुरु नानक खुलासा कर देन, बाणी दी व्याख्या बाणी कर दी है,

मैं क्या दसो मां की अरदास करनी है। कह लगी ओ सामने मेरा पड़पोता खेड रहा है, बस इसका व्याह वेख के मरा, अरदास करो। मैं क्या नहीं मां ये अरदास नहीं हो सकती, तू अपना व्याह वेख्या नहीं रजी, पुत्रां दा व्याह वेख्या नहीं रजी, पोतरियां दा व्याह वेख्या नहीं त्रिपत होई, तू याद रख पड़पोतरे दा व्याह वेख के भी नहीं रजेंगी। मोह का घेरा होर वड्डा हुंदा जाएगा, होर वड्डा हुंदा जाएगा, और मरण तो पहले यह घेरा टुटदा ही नहीं। धन ने और मनुख जो मौत तो पहले प्राणों के निकलन तो पहले मोह के घेरे विचों निकल जाते हैं। बड़े सूरबीर ने मोह नू जित लिया, मेरे नू जित लिया, और जो मेरे नू जित लैंदा है मोह नू जित लैंदा है प्रभु उसनू गलवकड़ी चलांदा है, और वो जीवन की बाजी वाकई जित लैंदा है, अपनी जिंदगी वाकई सफल कर लैंदा है।

स्थले पुत्र दी मड़ी लाश मेरे कोले। शेर ने हमला करके उसनु जख्मी कीता है, मार दिता है, उदी लाश मेरे कोल पई है। बस यही संदेशा देने वास्ते मैं थोड़े कोल आया, थानू दसन लई आया। राजा निर्मल प्रसन्न चित होके प्रसन्न मुद्रा विच हसते आया कहिंदा है, तपिया तप क्यों छाड़े हो,

हम आंख से बरछी तुम्हें खाते हुए देखें, होनहार साहिबजादा अजीत सिंह हाथ जोड़ के कहता है,

स्वयं श्रृंगार के शस्त्र पहना के सतगुरु भेजते ने अपनी अखां दे सामने शहादत दा जाम पींदे आया दोवे लखते जिगरां नूं देखते ने शुक्र करते ने परमात्मा दा ईश्वर दा अकाल पुरख दा असीम प्रेम दी दुनिया च जीण वाले धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ना ताज दा मो ना तहत दा मो ना परिवार दा मो ना संसार दा मो केवल प्रेम अकाल पुरख दा प्रभु चिंतन दे नाल उसकी याद दे नाल मोह प्रेम बन जाता है और प्रेम ईश्वर का रूप है जत्र तत्र दिशा विसा होए फैलियो अनुराग पर साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्रेम दी मूर्ति और आपका मूल फरमान साच कहो सुन ले हो सवे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो मोह सीमित है प्रेम असीम है संसार दी सीमा है मोह ग्रसे दी भी सीमा है निरंकार असीम है प्रेमी असीम है जैसे कोई त्रह त्रह प्रभु दी शरण विच जांदा है आसरा पकड़दा है अरजोई करदा है अरदास करदा है और उसकी याद विच डुबदा है मोह प्रेम बन जाता है फिर कुछ भी चला जाए कुछ भी आ गया ना हरक ना सोग प्रेम ही प्रेम प्रेम ही प्रेम।

वितरंतयंत सतरंद्रनंत अनिक माया विस्तीरने आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगणे भरम भ्यान उद्यान रमण महाबिकट असाध रोगणे

हर हर हरे। मनुख दियां बुनियादी मूल कमजोरियां दे चों प्रबल कमजोरी अहंकार, अहं, मैं हां, मैं हां, मैं हां। जिन्ने चिर तक ये मैं रहिंदी है, ये अहं भाव रहिंदा है, उतने चिर तक ही जन्म ते मरण चलता रहिंदा है, चलता रहिंदा है। ये जन्म ते मरण दा मूल है, ये जन्म ते मरण दा कारण है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, हौमें एहा जात है, हौमें कर्म कमाए, हौमें एही बंदना फिर फिर जौनी पाए। हौमें दा स्वभाव है, मनुख जितने भी कर्म करदा है अहंकार आशत, चाहे वो कर्म धार्मिक ने, चाहे वो कर्म सामाजिक ने, चाहे वो कर्म राजनैतिक ने। अहं मूल है, अहं मिश्रित हो जाता है हर कर्म विच, और वो कर्म जो अहं आश्रित है जन्म का कारण बनता है, जन्म मरण का कारण बनता है, और वो अहं दा बंधन फिर जन्म फिर मरण फिर जन्म फिर मरण, इस तरह अहं जन्म ते मरण दी बहुत ही लंबी यात्रा दे च पा देंदा है, बहुत लंबे गेड़ दे च पा देंदा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, हे पाप आत्मा अहंकार, तू जन्म ते मरण दा मूल है। वख वख जीवां विच अपने अपने दोष पाए जांदे ने, जैसे असी वेखदे हां हाथी विच काम रोग प्रधान है, और पतंगे विच दृष्ट रोग, मच्छी विच रसना दा रोग, और इसे तरीके नाल भौरे विच नासका दा रोग। होमे रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस कीना, दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गहे कुरंगा, हिरन्नो नाद दा कन्ना दा रोग। जो जो दीसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। ए रोग बंधन दा कारण बनदे ने, ए रोग दुख दा कारण बनदे ने, और मनुख दे सारे दुखां दा मूल कारण अहं अहंकार। अहंकार किधरे अस्थूल रूप धारण करदा है, किधरे सूक्ष्म रूप, किधरे पदार्थां दा अहंकार, किधरे धार्मिक कर्म जो परमात्मा दे प्रति कीते गए ने उस दा अहंकार, किधरे इस जीवन दा अहंकार, किधरे उस परम जीवन दी प्राप्ति दे जो साधन ने उना दा अहंकार। मूल रूप विच ए अस्थूल अहंकार धन आश्रित होंदा है, जोवन जवानी स्वप्न दे आधार ते खड़ा होंदा है, और शक्ति सता ताकत इस दे आधार ते खड़ा होंदा है। जोवन धन प्रभ ताकै मद में,
अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल दी तरह घूम रहा है। जोबन दी मस्ती रिच, धन दी मस्ती रिच और सता दी मस्ती रिच। धन जेब दे चोवे या मन दी सोचनी दे चोवे। जोबन वंत होवे या जोबन दी चाह मन दे चोवे। सताधारी होवे या सता दा चिंतन अंदर चलदा होवे। दोहां हालतां च पागल हो जांदा है। सता पागल कर देंदी है, सता दा चिंतन भी पगला देंदा है। जोबन पागल पंदी सीमा तक ले जांदा है, पर जोबन दा चिंतन भी पागलों वाली हालत बनाई रखता है। इसी तरीके नाल धन, धन जेब देच है, धन घर देच है या धन सोचा देच है, विचारा देच है, मनुख ते पागल होवेगा। इसका बहुत वड्डा पागलपन धन आश्रित है, जोबन आश्रित है और सता आश्रित है। तदि पातशाह फरमान कर रहे ने, जोबन धन प्रभुता कै मद में अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल होया फिरदा है। इसे विच अहंकारी अपने आप नू महान समझदा है, दूसरे नू तुच्छ समझदा है। आपस को दी रग कर माने औरन को लग मात, मनसा बाचा कर्मना मैं देखे दोजक जात। हर एक नू छोटा समझदा है, चाहे अगला महान होवे चाहे स्वयं तुच्छ होवे, अपने आप नू महान समझदा है, उच्चा समझदा है, सब तो उच्चा समझदा है। ईरानी सूफी संत हाफिज फरमान कर देने, दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, जिस दी महफिल देच खुर्शीद ए सूरज एक जर्रा है, एक निक्का जिया रेत दा जर्रा है। दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, खुदरा बजुर्ग दीदम शर्ते अदब नवाशद। उस महफिल देच तू अपने आप नू आखे मैं वड्डा, मैं वड्डा, मैं महान हां, जिथे सूरज भी एक निक्के जिया जर्रे वर्गा है, इसकी भी कोई औकात नहीं। पर मनुख दी भुल, मनुख दा अज्ञान, और जितना प्रबल अज्ञानी होवेगा उतना अहंकारी होवेगा। एक उर्दू दा महान शायर इसनु एक होर ढंग नाल भी बयान कर देने, इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म, मैंने ये दर्श पाया अपनी बसीरत से। ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता दा ज्ञान, इलम दी जहालत नालों चंगा है जहालत दा इलम। अगर थोड़ा बहुत कुछ समझे है, आलम होया है, विद्वान होया है और कई गुणा उस तो वद अहंकार नाल भर गया है, तो अहंकार इस गल दा सबूत है जो इलम है वो अमल देच नहीं, और ए अहंकार मूर्खता दे खड़ा है। इलम के जहूल से बेहतर है जहूल का इलम, ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता दा ज्ञान। अहंकार अज्ञान ते खड़ा होता है, ज्ञानी भी अज्ञानी समझो अगर
अहंकारी है। भगत शर्मौर श्री रविदास जी महाराज बड़ा सुंदर फरमान कर रहे हैं, हम बड़े कव कुनीन हम पंडिते, हम जोगी सन्यासी

अरारद निहाले दुश्मनी बरकुन के रंजो बेशुमार आरद। दोस्ती दा बूटाला मिलाप दा बूटाला जे तो खुदा दा मिलाप चाहना है, जे किधरे भुलेखे नाल तो दुश्मनी दा बूटा ला भी बैठा है, इसनों आज ही जड़ों पुट दे सवाए दुखां दे सोल तो इस बूटे नूं होर कुछ भी नहीं लगता। अमृत फल खाना चाहना है दोस्ती दा बूटा ला। भगत आत्मदर्शी मनुख ते सारे जहान नूं मित्र बना लैंदा है। सबको मीत हम आपन की ना, हम सब ना के साजन। किस तरह सारी कायनात नूं उसने मित्र बना लिया, पशु पक्षियां तक नूं, जड़ चेतन सब नूं अपना मित्र बना लिया। जिंदगी ते बड़ी छोटी है, दुनिया बड़ी वड्डी है, सारियां नूं मित्र बनाया आखिर किस तरीके नाल? गुरबाणी ढंग दसदी है, इक सज्जन सब सज्जना, इक वैरी सब बात। जद उस इक नूं सज्जन बना लैंदा है ते इक नाल सज्जनता दा जद रिश्ता जुड़दा है तो सारी अनेकता उस इक दे आसरे ते खड़ी है, अनेकता भी सारी सज्जन बन के रह जांदी है। जीवन धन हो जांदा है। कहिंदे मित्रां विच जीवना स्वर्ग विच जीवना है, दुश्मनां विच जीना नरक विच जीवना है। नरक ही भोग रहे ने ओ जो कहिंदे गलियां दे कख भी वैरी ने, पर स्वर्ग दे चवो ने जिन्हां ने शैतान नूं भी मित्र बना लिया है, दुष्टां नूं भी मित्र बना लिया है। सब मित्र सबको मीत हम आपन की ना, पर ए युगत अहंकारी दे कोल नहीं आउंदी। अहंकारी जे अस्थूल ढंग नाल नहीं अगर वो धार्मिक है तो सूक्ष्म ढंग नाल चोट पहुंचावेगा। बड़ी सुंदर एक गाथा है। एक संत बैरागी जंगल दे कुटिया बना साधना दे लीन है।

पर छोरे कसा बने। कसाई दे छुरे हेठ आ गया, उन्हें जबा कर दिता, सिर वट दिता। गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ लूटा कुछ पिस गया कुछ बिक गया बाजार में। रह गई तांते फिकते

ये बड़ा असाध रोग है। अहंकारी उसके हालात ऐसे बन जाते ने जैसे भयानक जंगल उद्यान विच कोई रमण कर रहा हो, भ्रमण कर रहा हो, क्योंकि अहंकारी दे गूढ़े मित्र नहीं रह जाते, उस तो सब दूर हो जाते ने और अहंकारी कल्ला रह जाता है। और ऐसा रह जाता है जैसे उद्यान विच भयानक जंगल विच मनुख तनहा रह गया हो। असाध रोग है, किसी वैद को इसकी दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो इस श्लोक की अखीरली पंक्ति विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इन फरमान करते ने, वैदं पार ब्रह्म परमेश्वर आराधनानक हर हर हरे। है वेद, है हकीम, कौन परमात्मा, केड़ी दवाई है उसके कोल, बस परमात्मा का नाम ही दवाई है। और ये दवाई किधरों बारों नहीं लानी, किधरों बारों नहीं लबनी, ये दवाई भी अंदर पई है। इस तरह जैसे के अहंकार रोग अंदर पे है, होमे दीर्घ रोग है, दारू भी इसे मां है। पर इसका यह मतलब नहीं दारू नहीं है, अहंकार अंदर है, औषधि भी अंदरों है। मैं अंदरों निकल रहे है, हूं जे किधरे अंदरों निकले तू इत औषधि हो गई। मैं इत रोग हो गया। ये रोग ते औषधि दोवें मनुख दे अंदर ने, इसकी मर्जी है रोग नू वधाना है कि औषधि नाल इस रोग नू घटाना है ते मिटाना है। मैं अंदरों निकलेगा, मेरा धन, मेरी कुल, मेरा रूप, मेरी प्रभुता, मेरी जात, मेरा कुल अंदरों ही निकलेगा। तू है कुछ भी नहीं मेरा, मैं ना ही, प्रभ सब किछ तेरा। ईघे निर्गुण उगे सरगुण, केल करत विच स्वामी मेरा। ये जो तेरा तेरा है ये भी अंदरों निकलेगा, और ये जो मेरा मेरा है ये भी अंदरों निकलेगा। इस वास्ते रोग भी अंदर है, दवाई भी अंदर है। सत्संग इस वास्ते है, और गुरु अर्जन देव जी महाराज का यह फरमान, ये वाक प्रेरणा दे रहा है, जे रोग अंदर है तो वैद भी अंदर बैठा है, औषधि भी अंदर है, तो उस औषधि का सेवन कर

सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। काल जाल जम जोहो न साके सच का पंथा थाटेओ। सतगुरु दी बाणी दा फरमान हुण काल दा जाल सानू वेख नहीं सकदा। काल दी फाई साडे ते पै नहीं सकदी। क्यों? असी सच दे मार्ग ते चल पए, असी सच दा पंथ बना लिया, असी सच दे राही बन गए। काल जाल जम जोहो न साखे सच का पंथा थाट्यो। काल समा अकाल समय तो रहत, फाई समय दी है, जाल समय दा है। मनुख वक्त दी गिरफ्त दे च है, मनुख समय दे बंधन दे च है, और समय दे प्रभाव हेठ जी रहे। वक्त समा काल मनुख तो जो चाहता है कराही जा रहा है, कराही जा रहा है, कराही जा रहा है, और इस सब कुछ मनुख काल दे जाल विच फस के ही कर रहा है। इंज कह लो बंधन दे च है। समय दा बोध होंदा है दिन करके रात करके। ठहर जाए दिन तो समय नु नापना औखा होवेगा, ठहर जाए रात तां वी समय नु नापना बड़ा औखा होवेगा। दिन ते रात दी ए गर्दिश समय नु नापण दा जरिया बनी, समय नु समझण दी एक प्रेरणा मिली दिन तो रात तो। लेकिन रात अपना एक बंधन लेके आउंदी है, दिन अपनियां बेड़ियां लेके आउंदा है। रात अपनी जाल लेके आउंदी है, दिन अपनी फाई लेके आ जांदा है। शायद इसे वास्ते ते पातशाह ने फरमान कीता, जाली रैन जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाई देती। दिन आया है एक जाल दी तरह, रात आई है एक जाल दी तरह, ते दिन ते रात दियां जो सठ घड़ियां ने ते सब फाइयां ने। रस रस चोग चुगे नित फासे छूटस मोड़े कवन गुने। ऐ मूरख किमें छुटेगा, समा तेरे कोल कराई जा रहे है, और इस सब कुछ तो इस तरह करदा पे है जैसे फाई देच फड़िया कोई पंछी फड़फड़ांदा है, जैसे जाल देच फड़िया फसिया होया कोई पंछी फड़फड़ांदा है, तड़पदा है। तो इस तरह मनुख दिन नू तड़प रहा है, रात नू तड़प रहा है, जो कुछ कर रहा है बंधन ही बंधन, जो कुछ कर रहा है मजबूरी ही मजबूरी। समा खिंच के इस तो सब कुछ कराई जा रहे है। इस वास्ते भारत दा धार्मिक अध्ययन करता, धर्म दी गहराइयां च जान वाला, उसने परमात्मा नु एक नाम दिता है अकाल। परमात्मा दी दुनिया च समा नहीं है, वक्त नहीं है, उत्थे वक्त है ही नहीं।
संसार काल है, निरंकार अकाल है। जो संसार विच जी रहा है, काल विच जी रहा है, और जो अकाल नाल सुरत जोड़ बैठा है, उदे संसार तो उच्चा उठ गया, काल तो उच्चा उठ गया। विद्वाना ने समय दियां तीन धारावां मनियां ने, समय नूं तीन हिस्सों विच वंडिया है, भूत, भविष्य, वर्तमान, माजी, हाल, मुस्तकबिल। मनुख जी रहा है समय दियां इन्हां ही तिन्नां धारावां विच। जद मनुख कहिंदा है मेरा मन टिक नहीं रहा, तो किथे चला गया? चला गया भूतकाल विच, चला गया भविष्य विच। मनुखी मन दी आदत है कदी भविष्य दी चिंता विच जीवना, कदी भूतकाल दियां यादां विच जीवना। भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। मनुख दा पिछोकड़ बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। मनुख दी जीवन यात्रा पिछोकड़ बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। एक धमाका होया सी ब्रह्मंड विच, एक शब्द होया सी, फिर धुंध बनी, पानी बनिया, ठोस जीवन बनिया, वनस्पति, पशु, पक्षी, सहजे सहजे ये विकास चलता रहा। अनंत काल तो बाद ये जीवन मिलिया, जिसनों मनुख कहंदे आ, तो भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। क्योंकि असी कदों तो हाँ ये नाप ही नहीं सकते। बल्कि भाई साहब भाई नंद लाल ते ऐसा कहंदे ने, नबूद हेच निशान हांजे जमीनो आसमा, कि शौके यादे तो अवर्द दर वजूद मरा। जमीन ते आसमान दा नामो निशान नहीं सी, नहीं सी। हे गुरु, हे प्रभु, मैं ते उदों दा यात्रा दे छां, पड़ाव ते बड़े आए, मंजिल नसीब नहीं हुई। रस्ते च वक्ती विश्राम करन लई थावां ते आईयां, सदीवी सुख, सदीवी विश्राम, ओ ते मंजिल ते लबना सी, मंजिल ते मिली नहीं। तो भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। भविष्य नूं बहुत लमकाया जा सकता है, बहुत लमकाया जा सकता है। मनुख दियां इच्छावां, मनुख दियां वासनावां, मनुख दियां कामनावां नूं नापिए तौलिए, इन्हां कामनावां विच ते सैकड़े नहीं लखां जिंदगियां जीवियां जा सकदियां ने। इतनी कामना, इतनी इच्छा, इतनी प्रबल वासना, इतनिया ख्वाहिशां, ये इस छोटी जी जिंदगी लई बोझ ने, बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने। जिंदगी छोटी, ख्वाहिश बहुत लंबी, बहुत लंबी, बहुत लंबी। जीवन सीमित है, कामनावां सीमित नहीं ने, वासनावां सीमित नहीं ने, असीम ने। जीवन सीमा विच कामना असीम, वासना असीम, इच्छावां असीम। इस वास्ते मनुख नूं समां चाहिदा है, अस्थान चाहिदा है। तो भविष्य बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। एक तीसरा समय जिसनों कहने वर्तमान, वर्तमान कितना होवेगा, वर्तमान नु किस तरह नापिए? असीम है,
भूतकाल, असीम है भविष्य, और मनुख इन्हां दोहां विच जीवदा है। जैसे पंजाबी दे संत कवि भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहंदे ने, बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़फावे। जो समा लंघ है उस दियां यादां मेरियां हड्डियां खा रहियां ने। जो समा आण वाला है उहदी चिंता मैनू जला रही है। भविष्य दी चिंता जला रही है, भूतकाल दियां यादां खा रहियां ने। इंज मनुख कदी भविष्य विच जल रहा हुंदा है, कदी भूतकाल विच खाया जा रहा हुंदा है, मिटदा जा रहा है। वर्तमान एक इन्ना क है, वर्तमान बहुत छोटा है। वर्तमान दी सीमा है, इस वास्ते वर्तमान विच कोई जीवदा नहीं, और वर्तमान दे जो टिक गया उसे नु योगी कहंदे आ, उसे नु असी संत कहंदे आ, उसे नु असी भगत कहंदे आ, उसे नु ही आत्मदर्शी कहंदे आ। पर फिर भी ना पिए वर्तमान किन्ना क है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे अनन भगत भाई साहब भाई नंद लाल इस नु नाप देना। वर्तमान किन्नक है, यकदम बखेशरा न बुरदम के कीसतम, ऐ वाय नकदे जिंदगी रायगा गुजस्त। वर्तमान ते एक दम है, एक दम एक क्षण एक सेकंड एक दम, एक दम जो मोह दे च है नकद है, कोल है नकद है। भविष्य दे दम उधार ने, पता नहीं आवने ने कि नहीं, मिलने ने कि नहीं। भूतकाल दम खर्च हो गया, दम ते लंघ गए, उते वर्त लै उते खर्च हो गए। भविष्य दे दम उधार ने, पता नहीं आवने ने कि नहीं, नकद ते है ओही दम जो मुंह दे च है। यकदम बहे शरान बुरदम के कीसतम, एक दम दी मैं विचार ना कीती एक ही है, दम दम करके मेरी जिंदगी रायगा चली गई, व्यर्थ चली गई। यकदम बहे शरान बुरदम के कीसतम, ऐ वाय नकदे जिंदगी रायगा गुजस्त। एकदम जो नकद से इनू मैं खर्च कीता, गुजरे हुए दमा दी याद विच खर्च होए, दमा दी याद विच एकदम जो मेरे मुंह विच सी वर्तमान नकद, इनू मैं बतीत कीता आण वाले दमा दी चिंता। तो इस तरह यादां भूतकाल दियां, चिंतावां भविष्य दियां, वर्तमान विच ते कोई जीवदा ही नहीं, वर्तमान है एकदम। शायद इस वास्ते ही दुनिया भर दे महापुरशां ने कहा, परमात्मा जद मिलदा है एक क्षण विच मिलदा है, एक क्षण वर्तमान, एक सेकंड, एक चित जै एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच ना आयो। टुकदम करारी जो करे हाजर हजूर खुदा है, उस दम दे ची अपने आप नु रोक लवे। वो एक दम जो नकद है उस ते विच ही मनुख बैठ जाए,
حاضر حضور خدا ہے. اسے نے مہان صوفی سنت بابا فرید نے انج بیان کیتا ہے، آج ملاوا شیخ فرید تاکم کونجنیاں منو مچندنیاں، جس نال من مچھردا ہے جے تو کدرے روک سکیں، جے کدرے بھوت کال دیاں یاداں نو مٹا سکیں، جے کدرے بھوش دی چنتاواں نو تو جلا سکیں، ہنے ہی خدا تے پرگٹ، پربھو تے پرگٹ. ورتمان وچ پہنچن لئی تے بڑی سادھنا، بڑی تپسیا. ورتمان دے چی بھگوان پرگٹ ہوندا ہے، ورتمان دے چی پربھو دی جھلک ملدی ہے. شاید اسے واسطے مہان دارشنک اور گرمت دے مہان گیاتا تتویتا برہم گیانی بھائی صاحب بھائی گرداس جی، انہاں دا فرمان ورتمان وچ ورت دا ہوونہار سوئی پروانا. گرمکھ تے ورتمان وچ جیوندا ہے ایک چھن وچ، اور اس وچ جو کچھ ہو جائے ہو گیا ہے قبول پروان، اور جو ہو گیا قبول ہے پروان ہے. سمجھ لو یہ جو ہو گیا اس تو اچھا اٹھ گیا، یہ سنسار تو اچھا اٹھ گیا، کیونکہ سنسار وچ دکھ ہے سکھ ہے، ہاسے نے رونے نے، جنم ہے مرن ہے، نفع ہے نقصان ہے. سنسار وچ عزت ہے بےزتی ہے، تندرستی ہے بیماریاں نے، سوپن ہے کروپتا ہے. اچھا اٹھ گیا ایک دم دچ، جد ٹکیا تو ایک پرگٹ ہویا، دو مٹ گیا، دو مٹ گئے سنسار مٹ گیا، ایک پرگٹ ہو گیا نرنکار پرگٹ ہو گیا. تو ایک دم دچ ہی پرگٹ ہوئے گا. بہتے دم جو خرچ ہو گئے نے انہاں دی یاد دچ پرماتما کتھے، انہاں دماں دی یاد دچ تے کچھ دکھ ہون گے کچھ سکھ ہون گے. بیٹھا ہوندا ہے منک یاداں وچ، کدی دکھ دیاں یاداں کدی سکھ دیاں یاداں، کدی ملاپ دیاں یاداں کدی وچھوڑے دیاں یاداں، کدی سنتاپ دیاں یاداں کدی ملاپ دیاں یاداں. اس وچ جی رہا ہوندا ہے، یا پھر بھوش دی چنتاواں دے جی رہا ہوندا ہے. یہ ملنا بھی ہے کہ نہیں، کامیاب بھی ہوواں گا کہ نہیں، نفع ہوے گا کہ نہیں، بھوش دی چنتا اس طرح دبدا وچ ڈبوئی رکھدی ہے. بھوش دی چنتا وچ منک دفاڑ ہویا بنیا رہندا ہے، ایک دم وچ تے بھوش مٹ جاندا ہے، ایک دم دچ تے بھوت کال مٹ جاندا ہے، ایک دم دچ تے ایک پرگٹ ہو جاندا ہے. وہ ایک آنند سروپ، وہ ایک آنند مئی. اس واسطے گروانی نے بھوش نو جال کہہ دیتا ہے، بھوت کال نو جال کہہ دیتا ہے، اور بھوت کال تے بھوش ایک گزرے ہوئے دن، آن والے دن، اور دن دن کر کے دن بھوت کال بندے جا رہے نے، دن بھوش دیاں چنتاواں دا روپ دھارن کردے جا رہے نے. تو سمے نو ناپن دا ڈھنگ دن تے رات ایک جال بن کے منک نو پھسا رہے نے. جالی رہن جال دن ہوا، جیتی گھڑی پھائی تیتی، رس رس چوب چگے نت پھاسے، چھوٹس موڑے کون گنے. دستے سہی کیوں چھٹے گا اس جال تو،
तो सतगुरु की बाणी डंग भी दसती है, काल जाल जम जोहो न साके सच का पंथा थाट्यो। सच ते वर्तमान है, सच ते एक क्षण दे छे, सच ते एक सैकंड दे छे, और ओही एक सैकंड, ओही एक क्षण, ओही एक दम सच है। लंग गए दम झूठ ने, आन वाले दम झूठ ने। एक छोटी जी गाथा है, धन गुरु नानक देव जी महाराज अगम्मी मौज दे बैठे, ते मरदाने नू कहिंदन, मरदाने आ तेनू अपने जीवन का किन्ना क भरोसा है, कितना तक तू जीवन की लालसा रखद, उम्मीद रखद, भरोसा रखद। सतगुर की संगत काल मिटिया ते नहीं मरदाने की दुनिया च, अजे काल छोटा जरूर हो गया। समा मिटिया ते नहीं, समा छोटा हो गया। कहिंदा है पातशाह, सौ कदम तक चला, अगे दा मैनू कोई भरोसा नहीं अगला कदम मैं उठ सकांगा कि नहीं। तो कम से कम 200-300 दमां दा थे मरदाने नू भरोसा है, इतने दम तो मैं ले सकदा। बाले नू पुछदे ने, बालिया तू दस। तो बाला कहिंदे पातशाह, मरदाने नू 100 कदमां दा भरोसा होवेगा, मैं तो एको ही कदम दे भरोसे जी रहा। एक कदम जो पुटे है, पता नहीं दूसरा कदम उठ सकांगे कि नहीं। तो 3-4 दमां दा भरोसा। समा बहुत सीमित हो गया, समा बहुत छोटा हो गया, काल बहुत छोटा हो गया। 3-4 दम दोवें हाथ जोड़ के पुछदे ने धन गुरु नानक देव जी नूं, पातशाह तुहानूं किन्ना क भरोसा है, थोड़े भरोसे नाल साडा बोध वधे, साडा ज्ञान वधे, थानू किन्ना क भरोसा है, दसो। साहिब कहिंदे ने हम आदमी हां इकदम ही मोहलत मौत न जाना। एकदम जो मोह दे चे बस इसे ते यकीन है, इन्ना क भरोसा है एकदम दा, बाकी दा कोई भरोसा नहीं, बाकी दी कोई उम्मीद नहीं। और जिथे सुरत एकदम दिस डिग गई उथे एक प्रगट हो गया, जिथे मन एकदम दिस डिग गया, मन मिट गया, विचार खो गए, उथे एक नु प्रगट होने लई स्थान मिल गया, जगह मिल गई। जद भविष्य दी चिंता बहुत लंबी होवे, भूत काल दियां यादां असीम आवन, सच नू प्रगट होण लई थां नहीं मिलदी। सच ते वर्तमान विच प्रगट आउंदा है, और जैसे सच प्रगट आउंदा है, सुरत एकदम विच टिकदी है, काल खो जांदा है, अकाल प्रगट हो जांदा है, काल मिट जांदा है, अकाल प्रगट हो जांदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते कहंदे ने, सब समय दा तमाशा, सब काल दा तमाशा, क्या छोटे क्या वड्डे, क्या आम साधारण क्या देवी देवते, सब काल विच जी रहे ने। काल पाए ब्रह्मा बप दरा, काल पाए शूजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। सब समय दा तमाशा, सब इस काल विच जी रहे ने। ब्रह्मे जैसा महान दार्शनिक,
विष्णु जैसा महान सतोगुणी, शिवजी जैसा महान तपेश्वर जपेश्वर, पर काल विच जी रहे, समय विच जी रहे, अजे समा मिठिया नहीं, अजे काल मिठिया नहीं, अजे काल मौजूद है, काल विच जीविया जा रहे। इस वास्ते गुरबाणी ने परमात्मा दा नाम रखिया अकाल। वो मूर्तिमान है, पर ऐसी मूर्ति जो वर्तमान विच प्रगट होंदी है, अकाल मूरत। भविष्य दी चिंतावां विच नहीं, माजी दियां यादां विच नहीं। इसनूं मैं पंजाबी रूप विच इस तरह बयान कीता है, माजी दियां यादां बस सागर दियां छल्लां, भविष्य दी चिंता बस गल्लां ही गल्लां, जीवन में सिखिया अज दे कोलों अज नूं मिलां ते अजे ही मिलां। इसनूं मैं उर्दू रूप भी दिता है, कुछ माजी की खाक हूं, कुछ मुस्तकबिल का नूर हूं, जीना अभी नहीं आया क्योंकि हाल से अभी दूर हूं। हाल वर्तमान, और जो हाल विच नहीं जी रहा उन्हों कहने ने ते बेहाल है, इते वर्तमान विच नहीं, इते एकदम विच नहीं, इते बेहाल है, इते भविष्य दी चिंतावां दे जी रहा, मुस्तकबिल दी फिक्र दे जी रहा, इते भूतकाल दियां यादां दे जी रहा, इते माजी दियां यादां दे जी रहा। ये वर्तमान दिच नहीं, ये हाल दिच नहीं, और जो हाल दिच नहीं परिशन च कहने बेहाल बेहाल बेहाल। इस वास्ते आम पद्धर ते भारत दिच ईरान अफगानिस्तान दिच पुछया जांदा है, तेरा की हाल है, तेरा की हाल है, भाव वर्तमान दिच है कि नहीं, एक प्रभु दिच है कि नहीं, कि दो दिच जी रहे हैं। सपना है जिन्ने देर तक चल रहा है, पर नहीं है अचेत अवस्था दे सपन, जागृत अवस्था दे मिट गया। है नहीं है, नहीं है, है सपन है। सपन दे मनुख कतल करे, शरीर ते मन ते ओही प्रभाव पैंदा है जो जागृत अवस्था विच मनुख करे। स्वप्न विच दुराचार करे, शरीर दी ओही हालत बनदी है, मन दी ओही हालत बनदी है जो जागृत विच। स्वप्न विच चोट लग जाए, जरब लग जाए, शरीर की हालत मन की हालत ओही बनती है जो जागृत अवस्था विच। पर स्वप्न विच मिलाप होया है, कोई मिले है, उतनी ही खुशी आती है। कोई मन चाहा मित्र मिले है, कोई मन चाही वस्तु मिली है, स्वप्न विच मिली है, मन प्रभावित होया है, तन प्रभावित होया है। स्वपन इस बारे असी ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है, है, पर जितनी देर विच कहने है नहीं हो जाता है, और जद कहने नहीं है, है हो जाता है। जागृत अवस्था विच जो संसार है वो निंद्रा अवस्था विच नहीं हो जाता है, स्वपन अवस्था विच नहीं हो जाता है, और स्वप्न अवस्था दे जो संसार है वो जागृत अवस्था दे च नहीं हो जाता है। जागृत अवस्था का जो साडा संसार है वो स्वप्न अवस्था दे च विलीन हो जाता है, और जो स्वप्न अवस्था दे संसार है वो जागृत दे च खत्म हो जाता है। तो हुण किस नूं सत कहिए ते किस नूं मित कहिए, किसनों कहिए है ते किसनों कहिए नहीं है।
तो धार्मिक विद्वान कहिंदे ने दोवें रूप देने पैने ने, है शायद नहीं है, नहीं है शायद है स्वपन जितनी देर ले चल रहे है। मिट गया स्वपन, सुपने दा संसार मिट गया, है जागृत और जागृत दा संसार। पर जैसे जागृत अवस्था खत्म हुई, निंद्रा अवस्था शुरू हुई, स्वप्न अवस्था शुरू हुई, तो जागृत अवस्था दा संसार नहीं।

संसार विच जींदे आ स्वप्न अवस्था विच दूसरे संसार विच जींदे आ, पर चूंकि जींदे आ तो है शायद नहीं है, नहीं है शायद है, उतने तक तो है जितने तक जागृत चल रही है, जितने तक स्वप्न अवस्था चल रही है। इसे वास्ते थे बयान कीता है महापुरुषा ने, शायद जगत स्वप्न है, जागृत भी स्वप्न है, स्वप्न भी स्वप्न है, लेकिन थोड़े जिया भेद नाल इसनू ज बयान करिए। जो रात दा स्वप्न है शायद ओ जागृत अवस्था की कल्पना है। जागृत अवस्था का जो संसार है शायद स्वप्न अवस्था का सुपना है। कल्पना जागृत अवस्था दे जो चल रही है सुपना है, निंद्रा अवस्था दे जो स्वप्न चलता है वो कल्पना है। दोहां नूं कल्पना कह दईए, दोहां नूं स्वप्न कह दईए, गल इक्को ही है। कल्पना है, स्वप्न है, पर असीं नहीं कह सकते कि स्वप्न नहीं है। शरीर ते प्रभावित होया है, मन ते प्रभावित होया है। रात नूं कोई दफीना मिल गया, धन मिल गया, औदा मिल गया, मित्र मिल गया, पुत्र मिल गया, कोई विछड़िया साथी मिल गया, खुशी ते होई है मन नूं, तन दे रोंगटे ते खड़े होए ने, पर कोई मित्र अजीज अकारब चलाना कर गया, नुकसान हो गया, किसी दुश्मन ने घातक हमला कर देता है, या स्वप्न विच मनुख ने दुराचार कीता है, कतल कीता है, मन ते उतना ही प्रभावित हो रहा है, तन ते उतना ही प्रभावित होया है। महापुरुषा ने इस वास्ते संसार नू सिर्फ मिथ नहीं आख्या, मिथ्या नहीं किया, है शायद नहीं है, नहीं है शायद है, काल है शायद नहीं है, नहीं है शायद है। काल का प्रभाव तो मौजूद है, समय का प्रभाव तो मौजूद है, उस प्रभाव हेत मनुख जी रहे है, किस तरह कह देवे कि नहीं है। जिस तरह जागृत अवस्था विच कदी असी सुखी आउंदे आ, कदी दुखी आउंदे आ, कदी हसते आ, कदी रोंदे आ, कदी कोई मिलदा है, कदी कोई विछड़दा है, कदी नफा है, कदी नुकसान है, स्वप्न अवस्था विच भी ऐसा आउंदा है। कुछ सुख भरे सुपने, कुछ दुख भरे सुपने, किसे सुपन विच असी बिस्माद भरी अवस्था विच आउंदे आ, किसे सुपने च असी रो रहे आउंदे आ, दुखी होंदे हैं, किसी सुपने विच कोई मिलिया होंदा है बड़े प्रसन्न, बड़े प्रसन्न, पर किसी सुपने च कोई बिछड़दा है बड़े दुखी, बड़े दुखी। जागृत अवस्था विच असी कदी पाठ कर रहे होंदे हैं, सुरत जुड़ जाती है, रस बन जाता है, ऐसा स्वप्न अवस्था विच भी आउंदा है, जुड़ जाता है मन, रस बन जाता है, आनंद बन जाता है। जिस संसारिक रस स्वप्न विच माणिया जा सकता है, तो निरंकार का आनंद भी स्वप्न विच माणिया जा सकता है। जिस जागृत अवस्था विच पदार्थां का रस माणिया जा सकता है, तो परमात्मा का रस भी माणिया जा सकता है। शायद इस वास्ते ही धन गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमान कीता है, सुपने आया

ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद कल कल वाली काम मद मनवा पीवण हार क्रोध कटोरी मोह भरी पिलावा अहंकार मजलस कूड़े लबदी पीपी होए खुआर। इस युग दे मालिक कलयुग दे अवतारी पुरुष धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा वकत दी रूप रेखा खिचदा होया ए महावाक ए महासंदेश ए महान उपदेश मनुख दे दिल दिमाग दे उते जद भी प्रभाव पैंदा है माहौल दा वातावरण दा समय दा मौसम दा शरीर प्रभावित होंदा है मौसम तो मन प्रभावित होंदा है बैरूनी माहौल तो एक घर दे कोई मनुख चलाना कर गया है लाश पई है चारों पासे रुदन हो रहे है पर कोई खुश खरम मनुख खुश तबीयत मनुख किसी कारणवश अगर उस घर दे प्रवेश करे अपने हास्य नु प्रगट नहीं कर सकेगा उस दियां भी अखां छलक उठणगियां। ओ जो बहुते मनुख अखां छलका रहे ने हंजू वग रहे ने इन्हां बाहर दे हंजूआं दा इतना प्रभाव है किथे मनुख हस नहीं सकेगा। एक व्याह शादी दा घराना है सेरे सजाए जा रहे ने मंगल गीत गाए जा रहे ने मंगल धुनिया वज रही ने सुंदर बस्त्रा नाल बराती सजे हुए ने सुंदर पकवान नाल चारों पासे दा वातावरण सुगंधित है महक डुल रही है। ऐसे माहौल विच अगर कोई गमगीन मनुख अपनी अखां तो हंजू कढ़ना चाहे नहीं कर सकेगा। वातावरण ने प्रेरणा है माहौल ने असर पाना है मौसम दा असर तन ते पैंदा है शीत लहर चल रही है मन प्रभावित होंदा है लू चल रही है मन तन प्रभावित होंदा है मौसम खिजां है या मौसम बहार है शरीर लाजमी अंदोलत होंदा है लाजमी प्रभावित होंदा है। खुशी दा घराना है या मौत दा घर है बाजार है या शमशान घाट है मनुख दा मन इस सारे माहौल तो प्रभावित होंदा है। कोई संगत है सतसंगत है हो ही नहीं सकदा कि मन प्रभावित ना होवे। जैसे असह सर्दी होवे बहुत शीत लहर होवे तो उस तो बचण दा असी उपराला कर दें। लू चल रही है गर्मी सीमा तो अगां टप गई है असी शरीर नु सुरक्षित रखण लई उपराले कर दें उद्यम कर दें। इस तरह ही आदि काल तो अवतारी पुरुष कहंदे रहने जिथे मन ते बुरा प्रभाव पवे जिथे मन डेंदी कला चला जावे उस माहौल दे प्रभाव तो बचण दा उपराला करो। तो कुसंगत तो बचण दा उपराला है सत्संग। अपवित्र माहौल तो बचण दा इको एक वसीला है पवित्र वातावरण
पवित्र माहौल। पर धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं ऐसा हो कि पवित्र थां कोई लभे ही ना, ते चारों पासे ही अपवित्रता होवे। ऐसे दौर देच मनुख अपने मन नू किस तरह बचावे। इकबाल ने भी कह देता है, दरमियाने कारे दरिया तख्ता बदम करदा अमी, बाज नी गोयन के दामन तरमकुन होशियार वास। तू लकड़ दे तख्ते नाल मैनू रस्सियां नाल बन दिता और दरिया दे सुट दिता। उपरों कह रहे हैं डुबना भिजी ना गिला ना हो तो मैं किस तरह बचावा, अपने आप नू किस तरह बचावा। ये जो माहौल है, ये जो युग है, ये जो बाहर दी हालत है, इसनू साडे देश दे ऋषि मुनिया ने नाम दिता है कलयुग। ते कलयुग नू गुरु नानक कहिंदे ने कलाली। ते कलाली तो मुराद आउंदा है शराब बना के बेचण वाला, जो स्वयं बनांदा है बेचदा है कलाल। पुराना शब्द साडे देश दे शराब बना के बेचण वालिआं नू कलाल कहिंदा है, कलाल। महाराज कहिंदे ने इह युग कलाल है, इह युग ही कलाल है, इह कलयुग ही कलाल है। अगर ये कलाल है तो फिर केड़ी शराब बनांदा है और केड़ी शराब बेचदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने जो शब्द उच्चारण किया है इसका सिरलेख इंज है, सलोक मर्दाना महला पहला। महले पहले तो मुराद है गुरु नानक देव जी महाराज का यह वाक है, पहले पातशाह का है। सलोक मरदाना पर ए शब्द मरदाने दे प्रति उच्चारण कीता है, जो गुरु नानक देव जी महाराज दा साथी सी। देखण नूं ते विचारिये सेवक सी, शिष्य सी, पर गुरु नानक भाई साहब करके बुलांदे सन, भाई मरदाना। भरा दा रिश्ता बड़ा गूढ़ा रिश्ता हुंदा है, और जो गुरु दा भरा है, गुरु नानक दा भरा है, भाईचारा बन गया गुरु नाल, इतनी बहुत वड्डी पदवी प्राप्त हो गई। तो सिख जगत देच भाई साहब एक धार्मिक पदवी है, गुरु नाल भाईचारा हो गया। हुण भाईचारा गुरु नानक नाल है, हुण भाईचारा गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल है, हुण भाईचारा गुरु अर्जन देव जी महाराज दे नाल है। इस भाईचारे नूं बड़े सन्मान नाल सिख जगत दे आदकाल तो देखिया जा रहा है, और अज भी असी चोटी दे धार्मिक मनुख नूं भाई साहब करके बुलांदे हां। मरदाने नूं सतगुर भाई साहब करके बुलांदे ने। जद भाईचारा है, इतनी नेड़ता है, तो नेड़ता दे कोई राज नहीं आउंदे। कहिंदे ने मनुख उत्थे छुपा के रखना चाहुंदा है, चादर पर्दा पाना चाहुंदा है, जिथे कुछ ओपरापण है। छुपाना ही इस गल दा सबूत है, जो कुछ भी सामने है सब बेगाना है, सब ओपरा है। हर मनुख अपने अपने पर्दे चुके फिरदा है, और हर मनुख बुरके देच है। किधरे किधरे ये अपना बुरका उतारदा है, जब देखदा है अपना है, ये अपना घर है, ये अपने ने, इन्हां नूं मेरी असलियत दा पता है और मेरे नंगेज दा भी पता है, की ढकना इत्थे की ढकना। लेकिन आम बेगानिया तो मनुख नूं पर्दा करना पैंदा। पर्दा इस गल दा सबूत है, बुरका इस गल दा सबूत है, कुछ सामने ओपरा है, बेगाना है। भैण भरा दे सामने बुरका नहीं करदी, मां पुत दे सामने बुरका नहीं करती, अपना है, ये तो अपना है। अगर मनुख कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है तो इसका छुपाना ही इस गल का सबूत है, सामने ओपरा है,
سامنے کوئی بیگانہ ہے، اپنے دے سامنے تے منک سب کچھ اگھاڑ کے رکھ دیندا ہے، خدا جی کردا ہے اپنا سینہ بھی چیر کے ادھے اگوں رکھ دے، لیکن بیگانے دے پرتی تے بڑا ساودھان ہوندا ہے، کدرے اس دیاں نظراں میرے سینے تک نہ پہنچن، یہ کدرے میرے اندر جھات نہ مارے۔ تو جتھے بھائی چارہ بن جائے اتھے سب کچھ کھول کے رکھ دیتا جاندا ہے، اور جتھے پردہ پانا پے دو گلاں ہو سکدیاں نے، یا تے سامنے سارے بیگانے نے اوپرے نے، اور جس تے پردہ پایا جا رہا ہے کوئی چنگا بھی نہیں ہوئے گا۔ ہمیشہ زخماں تے پٹی بننے دی لوڑ پیندی ہے، ہمیشہ شریر دا داغی تھاں چھپانا پیندا ہے، ہمیشہ شریر دے اپنگ حصے نوں ہی ڈھکنا پیندا ہے، چھپانا پیندا ہے، دوسرے توں لکانا پیندا ہے۔ جو کچھ بھی لکانا چاہتے ہیں چھپانا چاہتے ہیں، اتنی گلتے سپشٹ ٹھیک نہیں ہوئے گا۔ گندگی نو ڈھکن دی لوڑ ہے، بشٹا نو ڈھکن دی لوڑ ہے، پھلاں دے اتے چادر پان دی کوئی لوڑ نہیں۔ نگنتا نردوشتا دا ثبوت ہے، نردوش ہے، نگن ہے، نگن ہے، نردوش ہے، گناہگار ہے، ڈھکیا ہوا ہے، اور ڈھکیا ہوا اس گل دا ثبوت ہے گناہگار ہے، گناہ نو ڈھکنا پیندا ہے۔ ایک معصوم بچے دا جنم ہویا ہے، ننگا ہے، پر اس دی نگنتا وچ ننگیج پنا نہیں ہے، اس دا ننگا شریر لوبھ دی پردرشنی نہیں کر رہا، اس دا ننگا شریر واشنا دی پردرشنی نہیں کر رہا، اس دا ننگا شریر کام دی پردرشنی نہیں کر رہا، جدکہ کئیاں دے ڈھکے ہوئے شریر بھی پردرشنی کر دینے۔ گندگی تے چدر پائی ہے، چدر دے چوں بھی بدبو باہر آ گئی ہے، چدر دے چوں بھی گند باہر آ گئی ہے۔ تو اے دور، اے سماں، اس نو گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے کلال، اور اے شبد اچارن کر رہے نے مردانے دے پرتی، مردانے دے سامنے اس یگ دی نگنتا سدگر پیش کر رہے نے، حالانکہ یگ نے اپنے آپ نو ڈھکے ہے، بہت ڈھکے ہے، بڑا ڈھکے ہے۔ ایک زمانہ تے ایسا بھی سڑے دیش دے لنگے ہے کہ اسی دھارمک پرشاں دیاں مورتیاں بھی نگن بنائیاں، دھارمک مندراں دے بھی نگن مورتیاں بنائیاں، اور بڑے بڑے سادھواں دے ٹولے بھی چلے نانگے سادھو، ننگے سادھو۔ سادھو ہون دی پہچان ننگا ہے، ایدے کول ڈھکن واسطے کچھ بھی نہیں، ڈھکن واسطے کچھ نہیں، اس دا یہ مطلب نہیں کہ ایدے کول کپڑے نہیں نے، نہیں، ایسی کوئی گندگی اس دے کول نہیں جس نوں اے ڈھکے۔ پھل ننگے ہی ٹھیک رہندے نے، پر جیسے جیسے منک دے چھدر ودے گئے، زخم ودے گئے، پٹیاں بھی ودیاں گئیاں، اور جد سارا ہی شریر زخمی ہو گیا تو سارا شریر پٹیاں نال بھر گیا، کپڑے نہیں پہنے ہوئے، زخماں دے تے پٹیاں بنی ہوئیاں نے۔ حقیقت اے ہے، ہما تن داغ دار شدم، پمبا کجا کجا نے ہم۔ یہ صوفی سنت کہندا ہے روم روم زخمی ہے، کتھے کتھے میں پمبا رکھاں تے پٹی بننا، تے جی میں پٹیاں اتنیاں بنا روم روم دیتے تے پٹیاں تے میرا لباس بن جان گیا، پٹیاں میرا پہراوا بن جان گیا۔ گناہ نو ڈھکن لئی جو کپڑے پہنے، وہ کپڑے لباس بن گئے، وہ کپڑے فیشن بن گئے، وہ کپڑے سماج دا انگ بن گئے۔ ورنہ گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے اے احساس پشواں چ نہیں پیدا ہویا، وسماد نانگے پھرے جنت۔ مہاراج کہندے نے میں تے وسماد ہو جانا، پشو ننگے ہی گھم رہے ہیں، انہاں دی نگنتا لوبھ دی پردرشنی نہیں کردی، انہاں دی نگنتا ہنکار دی پردرشنی نہیں کردی، انہاں دی نگنتا واشنا دی پردرشنی نہیں کردی۔ منکھتا دے آدھ کال دے
मनुख जद निर्दोष सी इतना ही निर्दोष जैसे कि पशु ते पक्षी ने कपड़िया दी लोड़ नहीं सी। दोष वद्दे गए कपड़े वद्दे गए सहजे सहजे समाज दा हिस्सा बन गए कपड़े। जो कपड़े पहन रहे है भले मानस है निर्दोष है हुन नंगा दोषी कहलाण लग पे। इस वास्ते दोषी मनुख नूं असीं कह देने आ बड़ा नंगा मनुख है ये ते बड़ा नंगा है। कमाल दी गल एक दौर ऐसा लंघिया ये ते बहुत गुनाहगार है सब कुछ ढक के रखे है ढकिया होया है। परिभाषा बदल गई ये ते बहुत नंगा है ये ते बहुत नंगा है। वक्त दा तकाजा समय दा प्रभाव। तो ये शब्द धन गुरु नानक देव जी महाराज ने मर्दाने दे प्रति उच्चारण किया है। कल कलवाली काम मद मनुवा पेवन हार। एक कल आम पर चलता है शराबो कबाब। कबाब नाल शराब जुड़ गई शराब नाल कबाब जुड़ गया। ऐसा क्यों शराब और हलवा इंज नहीं कहंदे शराब और मिठाई ऐसा नहीं कहंदे शराब और रोटी ऐसा नहीं कहंदे शराब और अंब ऐसा नहीं कहंदे शराब और कबाब। लगदा है कुछ जरूर चोली दामन दा साथ है। अगर साथ ना होंदा तो इस तरह भी कहा जा सकदे शराब और दुध शराब और दही शराब और घी ऐसा नहीं कहंदे जबकि सारियां चीजां खाण वालियां शराब और कबाब। कबाब नो शराब चाहिदी है शराबी नो कबाब चाहिदा है। इना दोहां दा चोली दामन दा साथ है। और धन गुरु नानक देव जी महाराज ऐसे रैवरी पुरुष ने शराब दी गल कर रहे ने कबाब दी गल कर रहे ने। खाना है कबाब जरूर खा पर जिस तरह दा ढंग मैं तेनू बनाण दा दसदा कबाब ओ खा। शराब पीनी है जरूर पी पर जेडी मैं बनाण दा ढंग तेनू दसदा ओ पी। बन शराबी बन कबाबी ऐसा शराबी ऐसा कबाबी कि परमात्मा भी तेनू सीने नाल लाण ते मजबूर हो जाए। किसे वक्त सतसंग नूं मैखाना कहा जांदा सी अज ते खेड़ी कुछ होर हो गई सिलसिला कुछ होर हो गया। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने ए युग कलाल है। अगर ए कलाल है तो इस दे कुल शराब केड़ी है। कल कल वाली काम मद इस दे कुल काम दी शराब है। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी हम कहियत कल युग के कामी। धन भगत रविदास जी महाराज हे प्रभु तू जगत दा स्वामी असी इस युग दे कामी तो तालमेल किस तरह बैठे। एक दौर ऐसा भी लंघे है हर पासे धर्म दी प्रदर्शनी सी धर्म दी नुमाइश सी। बाहरों भी डुल डुल के धर्म पैंदा सी गल दे च माल आए हत्थां च माल आए घर दे च मालां लटकियां हुई ने ग्रंथ पए ने तमाम धार्मिक साजो समान नाल घर सजे हुए ने। और घर विच भी जाके ऐसा पता चलदा सी जैसे मंदिर है धर्मशाला है। दौर बदलिया घर विच बार बन गई घर विच बोतलां आ गई घर विच वैश्याले बन गए। हैरानगी दी गल पहले घर मंदिर सन घरम धर्मशाल सन हुण ते बहुते धर्मशाले भी किसे हद तक मैखाने ही ने भ्रष्टाचार दे अड्डे ने दुराचार दे अड्डे ने
दौर बदले है, समय दा प्रभाव, महाराज कहंदे ने कलाल है ए युग, और ए बना रहा है काम दी शराब। ज्यादा चर्चा इसे दी है, ज्यादा यही देखिया जा रहा है टीवी ते, अखबारां विच, इश्तहारां विच, तरह तरह के मैगजीन, तरह तरह के गंदे नावल, जिनसियात नाल भरिया हुई कहानियां, हर पासों उजागर काम की प्रदर्शनी, काम की नुमाइश। आखिर मनुख कोल जो कुछ होवेगा उसे दी प्रदर्शनी करेगा, आखिर मनुख कोल जो कुछ है वही बार प्रगट करेगा। काम ही काम जीवन की एक वक्ती लोड़ हो सकता है, काम जीवन नहीं हो सकता। लोड़ कतई जीवन नहीं आती। इसनों जिस आलमाना ढंग नाल धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बयान किया है आप दे सामने रखा। पंकज फाते पंक महामद गुंथिया, अंग संग उरझाए बिसरते सुंफिया। पंकज पंक कहंदे ने चिक्कड़ नूं, पंकज पंक दे चो जमया, चिक्कड़ दे चो पैदा होया पंकज, पंक ने जन्म दिता है, चिक्कड़ ने जन्म दिता है पंकज। तो चिक्कड़ किसनों जन्म देंदा है? चिक्कड़ एक चोटी दे फुल नूं जन्म देंदा है, जिसनों कमल कहंदे ने, जिसनों सौरभ कहंदे ने, जिसनों कंज कहंदे ने, जिनू पदम कहंदे ने, जिनू सारंग कहंदे ने, जिसनों बारिज कहंदे ने। धार्मिक ग्रंथां दे गालमन इसके 18 नाम ने, और यह धर्म का प्रतीक है। अगर कोई धार्मिक मनुख है तो कह दिता जाता है तो कमल की तरह। भारत के मंदिरों के गुंबद कमल ने। बोध भिक्षु जब सवेरे सवेरे भिक्षा लई चलते ने हद च कमल की पंखड़ी लेके, ताकि एहसास रहे विचर रहे हैं बाजार दे गलियां दे कमल दी तरह रहना है। डुबना भी नहीं, भिजना भी नहीं। महाराज कहने पंकज फाते पंक, जो पंक तो जमया सी, चिक्कड़ तो जमया सी, महाराज कहने चिक्कड़ी ची फस के रह गया। पंकज फाते पंक, पंकज पंक दे फस के रह गया। कदी ऐसा होंदा है सरोवर दा पानी सुकन लग पैंदा है, ते बाहर दे जल झरने जो इस विच आ रहे सन वो अवरुद्ध हो जांदे ने, रुक जांदे ने, पानी नीवा होण लग पैंदा है। और इतना नीवा कि चिक्कड़ दिखाई देण लग पैंदा है, और वो कमल जो बहुत उपर उठाया होया सी चिक्कड़ दे नेड़े चला गया। पानी दे आसरे थे बहुत उच्चा उठिया सी, बहुत उच्चा उठिया सी, नीवा चला गया, थल्ले चला गया। लेकिन अचानक जोर दी बारिश हो गई, चारों पासे दा जल झरना झरनिया दा रूप धारण कर सरोवर दी तरफ आया, और सरोवर बड़ी तेजी नाल भरन लग पया। जितनी तेजी नाल पानी उच्चा हो रहा है, इतनी तेजी नाल कमल उठ ना सकया। जितनी गति नाल पानी ऊपर उठ रहा है, ये गति कमल अपनी बना ना सकया। होया कि पानी ऊपर चला गया, कमल थल्ले चला गया। चिक्कड़ तो जमया, फिर चिक्कड़ दे फस गया। पंकज फाते पंक महामद गुंफिया, अंग संग उरझाए बिसरते सुंफिया। ऐसा चिक्कड़ विच उलझे है, अपनी सुगंध ही भुल गया, अपना सुअपन ही भुल गया। चिक्कड़ तो जमया सी, हुण अपने आप नूं चिक्कड़ ही समझ बैठा। जन्म काम तो है, अगर जीवन भी काम बन जाए तो चिक्कड़ तो जमया ये कमल चिक्कड़ विच लीन हो गया। चिक्कड़ चिक्कड़ ही बन के रह गया,
چکڑ کمل نہیں ہو سکیا، کام رام ہو جائے تو چکڑ کمل بن گیا، کام صرف کام ہی رہ جائے تو کمل چکڑ وچ پھس کے رہ گیا۔ یہ ادارن بڑا سندر دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج نے دیتا ہے، کام تو جمیا اے جیو کام دے چ ہی پھس کے رہ گیا، چاروں پاسے اج ناٹک فلما میگزین اشتہاری دنیا اخباری دنیا ٹی وی دی دنیا ریڈیو دی دنیا سماجک دنیا راجنیتک دنیا ہتا کہ دھارمک دنیا بھی کام دی نمائش تو بنا ہور کچھ رہ نہیں گئی، چاروں پاسے اس دی پردرشنی۔ کارن اے جڑا یگ ہے ایک کلال ہے، ہے ہی دے کول شراب، یہی شراب ہے، منکھاں نوں کسے ہور سرور دا پتہ ہی نہیں، کسے ہور نشے دا پتہ ہی نہیں، دنیا دے سارے نشے بھی کام دے آلے دوالے منڈلا رہے نے، اور کام پربل نشہ جس دے منکھ بے صورت منکھ بے ہوش۔ یہ گل وکھری ہے کہ اتنا کھل کے اس وشے تے اتنا بولیا نہیں گیا، لکھیا نہیں گیا، اور جد کسی نے کچھ لکھیا ہے تو اس گرنتھ نو دھرم گرنتھ نہیں آکھیا گیا، جد کوئی بولے ہے تو انہاں بولاں نو دھارمک بول نہیں آکھیا گیا، حد ہو گئی۔ جس تو جیون جمے ہے اس من دے بول اینو ایک پاسے رکھ دیئے دھرم دا حصہ نہ مانیے تو پھر اے تے انجو جویں کہہ دیئے جنم ہی نہیں ہویا، یا جتھوں جنم ہویا اسی اس نو مندے ہی نہیں۔ جیون ادھوں سفل ہو جاندہ ہے کہ جمے کام دے چاں اے لین ہووے رام دے چ، یاترا سفل ہو جاندی ہے۔ چکڑ تو جمے ہے پر چکڑ تے پانی دوہاں تو اچا اٹھے، کام تو جمے ہے پر اے کام تے پدارتھاں دوہاں تو اچا اٹھے، پانی تو بھی اچا اٹھے۔ کئی دفعہ زور نال ودیا ہویا پانی بھی ڈپو کے رکھ دیندا ہے، اوپر نہیں اٹھن دیندا، اچانک دھنوان ہو گیا ہے، اچانک ستا مل گئی ہے، پربھتا مل گئی ہے، بڑی تیزی دے نال دھن سمپدا آئی ہے، نہیں سنبھال سکیا، غرق ہو گیا، ڈب گیا۔ آہستہ آہستہ جد سروور دے چ پانی پیندا ہے، آہستہ آہستہ پھل بھی اوپر اٹھتا رہندا ہے، پر ورلے کوئی پھل نے ایسے جو تیبر گتی دے چ اپنے آپ نوں تیبر گتی چ اٹھا سکن۔ پانی دا ویک بڑا تیبر ہووے، بڑے تیبرتا دے نال پانی ودا جا رہا ہے، اچا ہو رہا ہے، اور اسی تیبرتا دے نال او اپنے آپ نوں اچا کر سکے، کٹھن ہو جاندا ہے، اوکھا ہو جاندا ہے۔ کام ہی ایک شراب ہے جو ایک کلال اپنی دکان تے سجا کے بیٹھا ہے، ویچ رہا ہے، پی رہا ہے، پلا رہا ہے۔ کل کل والی کام مد منوا پیمن ہار، کرودھ کٹوری موہ بھری پلاوا اہنکار۔ اے سما اے یگ تے کلال ہے، کام دیاں بوتلاں کام دی شراب سجا کے بیٹھا ہے، پر یہ کس پیالے وچ پیتی جاندی ہے، اور ساقی کون ہے، پلان والا کون ہے؟ کہندے کلال ہووے شراب ہووے پیالہ نہیں ساقی نہیں تو میں خانے دا رنگ نہیں جمدا۔ اس کلال دا جو میخانہ ہے رنگ جمے آیا ہے۔ کام مد کل کل والی کام مد منوا پیمن ہار، کرودھ کٹوری مو بھری پلاوا اہنکار۔ پیالہ ہے، کروڑ
क्रोध दा, साकी है अहंकार और शराबी शराब दे पीण वाला है मनुख दा ए मन। तन भावें सारिया दे पानी पीण वाले हवन, मन ते सारिया दे शराब पीण वाले। तन भावें दुध पीण वाले हन, मन ते सारिया दे शराबी ने। एक गल वखरी है, दिस पैंदा है ए मुंह नाल दुध पी रहा है, मन नाल शराब पी रहा है। मुंह नाल भोजन छक रहा है पर मन नाल ते शराब ही पी रहा है। शराब ही काम दी शराब। शराब दा काम की है? बेहोश करना। काम वासना एक ऐसी बेहोशी है जिस विच मनुख नू अपना नाम धाम कुछ भी चेते नहीं रहिंदा। कहिंदे जन्म दा कारण भी बेहोशी है, मरण दा साधन भी बेहोशी है। बेहोशी च जमदा है, बेहोशी च मरदा है। बेहोशी दे च मरण दी क्रिया चल रही है और बेहोशी दे च ही जन्म दी क्रिया चल रही है। बेहोशी हावी है। जब काम दे च होश हो गया है तो फिर मरण दे च भी होश होवेगा, और जिसका मरण दे च होश हो गया है ना फिर जन्म ना फिर मरण, फिर तो अगम्मी दुनिया दा वासी हो जांदा है। बहुत वड्डे अपराध करने अवन तो कई दफा मनुख अपने आप नू थोड़ा बेहोश करदा है, शराब पींदा है। ते जे काम दी शराब दा नशा मनुख दे मन नू हर वक्त चढ़िया होवे तो इस दीआं अखां ते हर वक्त मैलियां रहणगीआं, इस दा तन ते हर वक्त मैला रहेगा। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने क्रोध कटोरी। क्रोध दा एक कटोरा है, प्याला है, मोह भरी। मुंह दे च क्रोध भरिया है, मुंह कटोरा बनया होया है। एदे च की है? काम दी शराब और क्रोध कटोरा बनया है, क्योंकि क्रोध ते मुंह दे राही ज्यादा प्रगट होंदा है। भावें क्रोध अखां च भी प्रगट होंदा है, भावें क्रोध हत्थां च भी प्रगट होंदा है, भावें क्रोध चेहरे ते भी प्रगट होंदा है, पर क्रोध दी अस्थूल क्रिया बहुती जबान तो प्रगट होंदी है। और जे जबान चों क्रोध निकलन लग पवे तो जबान सख्त होंदी है। कहिंदे ने जबान दी सख्ती परमात्मा नू पसंद नहीं। खुदा को न मंजूर थी सख्ती जुबान में, इसीलिए ना हड्डी रखी जुबान में। जबान दे च उसने हड्डी नहीं रखी, सख्ती नहीं चाहिदी जबान दे। और जो जबान दे सख्ती ले आया है, समझ लो जबान दे च हड्डी आ गई है, इदे हलक दे च हड्डी आ गई है, इसकी जबान सख्त हो गई है। घरेलू बहुते कलेश जबान दी सख्ती तो पैदा होंदे। बहुत सारे संघर्ष ते लड़ाइयां दा कारण मनुख दी अखां नहीं ने, मनुख दे कन नहीं ने, मनुख दी नासका नहीं है, मनुख दे हाथ पैर भी नहीं, मनुख दी जबान है। अगर कल कलेश दा मूल केंद्र लबांगे किस कारण करके होया है तो जबान ही मिलेगी। क्रोध कटोरी मोह भरी पिलावा अहंकार। पिलावा कौन है, साकी कौन है? अहंकार, पेश करने वाला अहंकार। मैं हां। जितना अहंकारी मनुख होवेगा उतना क्रोधी होवेगा, जितना अहंकारी मनुख होवेगा उतना ही कामी होवेगा। ताई ये दोवां दा कट्ठा जिक्र किया मेरे पातशाह दी बाणी ने, काम क्रोध काया को गाले, ज्यों कंचन सोहागा डाले। जिवे सोने नू सोहागा डाल के रख देंदा है, काम ते क्रोध मनुख दी काया नू गाल के रख देंदा है। काया दे बहुत सारे क्रोध, काया दे बहुत सारे रोगां दा मूल कारण असीम क्रोध असीम काम। अगर काम सीमा दे च है ते क्रोध खत्म हो गया है, इस मनुख दी काया कंचन वर्गी हो सकती है।
कंचन वर्गी का आया। जे प्रसाद अरोग कंचन देही लिवलावो तिस राम सनेही। सोना की सोना होवेगा काया ही सोना है, काया ही कंचन है। पर काया नू कंचन बनाना किसे किसे नू आंदा है, काया नू लोहा बना के और जंगाल ला देना इस सब नू आंदा है। और गुरु नानक ने इसका बड़ा जिक्र किया। कल कल वाली काम मद मनवा पीवन हार, क्रोध कटोरी मोह भरी पिलावा अहंकार। मजलिस भी चाहिए है, शराब कली के में पी है, कोई महफिल कोई साथी, यही कारण है शराबी साथी लब देना, साथ लब देना। तो मजलिस वास्तविक केड़ी है? महाराज कहते हैं मजलिस कूड़े लब दी पीपी होए खुआर, झूठे लोभ दी महफिल। झूठ क्यों कह देता, लोभी झूठा ही होता है। झूठ क्यों कह देता, जीवन सीमा दिच है, लोभ असीम है। कितना जीवेगा, 100 साल, चलो 150 साल तक जी रहेगा। जीवन दी सीमा है, मनुख दे लोभ दी सीमा नहीं है। अज तक किसी भी पैमाने नाल मनुख दा लोभ नापिया नहीं गया। ये गल वखरी है, हिमालिया दी बुलंदी नाप ली गई है, प्रशांत महासागर दी गहराई नाप ली गई है, सूरज चंद तारियां दी बुलंदी नाप ली गई है। ये लोभ किथे खत्म होता है, सीमा अजे भी पकड़ च नहीं आई। किथे खत्म होगा, किथे गल मुकेगी। इति सहस खटे लख को उठ धावे, तृप्त ना आवे माया पाछे पावे। कहिंदे ने एक राजे ने एक भिक्षु नू, बौद्ध भिक्षु नू बेनती की थी, बड़ा आनंद दिखाई देंदा है थोड़े कोल, बड़ा सरूर बड़ा रस, साड़ी झोली च भी पाओ। ये भिक्षु कहन लगा, अच्छा मैं कल जब थोड़े द्वार ते भिक्षा मंगण आवांगा तो कुछ भिक्षा मैं थोड़ी झोली च भी पा देंगा। तुसी पदार्थ मेरे पात्र दे पाना, परमात्मा दी कुछ गल्ला मैं थोड़े पात्र दे पाण दी कोशिश करांगा। और अक्सर संत ते संसारी पदार्थ ते परमात्मा दा वट्टा सट्टा करदे ही रहने, वो पदार्थ चोली च पा देंदे रहने, वो परमात्मा दी गल सुना देंदा रहे। आदकाल तो ऐसा चलदा रहे। राजा खुश होया और कहन लगा, ए भिक्षु फिर कल सब तो पहले साढ़े घर ही आना, इत्थे ही आना, असी भिक्षा लेके खड़े आवांगे। अक्सर बौद्ध भिक्षुआं नू भिक्षा देण लई भिक्षा दाते बार खड़े होंदे ने और देंदे ने, जिथे जिथे बौद्ध धर्म है ये दृश्य बहुत देखने मिलते हैं। राजा

पकवान थल्ले बिखर दे गए, गिरदे गए। भिक्षु दा पात्र अगे है। राजा कहिंदा है, ऐ भिक्षु, तुसी भिक्षा मंगण ते आ गए और राज द्वार ते आए, पर कम से कम अपना भिक्षा पात्र ते वेख लेंदे, ये ते टूटे होया है, इहदा थल्ले पेंदा ही नहीं है। राजन, फिर मैं यही गल तैनू आखा, तू रब दी गल मैं थों सुनना चाहना है, परमात्मा दा ज्ञान मैं थों लेना चाहना है, तैनू अपना छलनी मन नहीं दिखाई देंदा। तेरे दित्ते हुए पदार्थ मेरे पात्र तो डुल गए, मेरा दित्ता होया परमात्मा दा ज्ञान भी तेरे पात्र तो डुल जाएगा। पहले अपना पात्र ठीक कर, भिक्षा मिल जाएगी। पहले अपना मन ठीक कर, भगवान मिल जाएगा। मजलस कूड़े लबदी पी पी होए खुआर, इस शराब नू पी पी के दुनिया खुआर हो रही है और अपना जीवन अजाई गवा रही है, लेकिन शराब नाल कबाब जुड़े होया है। और अक्सर जद शराब दी गल चले शराबो कबाब, कबाब दी गल चले शराबो कबाब, कबाबो शराब, शराब कबाब खांदे हो। हालांकि एक पीण वाला है, एक खाण वाला है, पर शराब नाल कबाब जुड़ गया। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने कबाब खाने ने, तो जिस ढंग नाल मैं तेनू जबा करन नू दसदा, बकरे नू इस ढंग नाल जबा कर। और जब तू उस छुरे नाल जबा करेगा और मेरे दसे ढंग दे मुताबिक करेगा, तो जब उस बकरे च खून निकल जाएगा, जान निकल जाएगी, वो जड़ा मांस होवेगा जे किधरे तू खा लवे, कदी जिंदगी तेनू भुखी नहीं लगेगी। हर वक्त रजिया रहेगा, हर वक्त त्रिपत रहेगा। तो जे हुण पुछिए, बाबा केड़ा छुरा है? गुरु नानक दे बोल बड़े कीमती, सच की काती सच सबसार, छुरा होवे सच दा। सच नू छुरा क्यों कह दिता? सच ऐसा छुरा है, ये दो धारा खंड है और दो नौका खंड है। सच बोलांगे दूजे नू भी चुभदा है, अपने नू भी चुभदा है। ये दूजे नू भी घायल करेगा, अपने नू भी करेगा। इस वास्ते सच बोलना कठिन है, कठिन है। ये दूजे नू चुभेगा पर अपने नू भी चुभेगा, और जद चुभेगा कटेगा, तो छुरे दा एक कम है, जद किसे दी गर्दन कटे, किसे दे अंग नू कटे, किसे नू चुभे, तो खून ते निकलेगा। अगर सच दे छुरे नाल जवा करिए और सच दा छुरा ए चुभे दो दारा, तो झूठ ते निकलेगा। झूठ दा ही खून मनुख दे अंदर है, खून नहीं है, झूठ है मनुख दे अंदर। बाहर दे छुरे नाल शरीर चो खून निकलदा है, सच दे छुरे नाल कोई जबा होवे अंदरों झूठ निकलदा है। सच की काती सच सब सार, घाड़ तिसकी अपर अपार, ये जो सच दा छुरा है इहदा लोहा सच है, इसकी जो धारा है घाड़त है वो भी सच है। किसका कुठा होवे सेख, लहू लब निखथा वेख। अगर इस छुरे नाल जे किधरे कुठा करें, दो तरीके ने, कुठा झटका, एक झटके नाल गर्दन अलग की थी झटका, आहिस्ता आहिस्ता रेत के गर्दन अलग की थी, इनू कुठा कहंदे ने, कोहना आहिस्ता आहिस्ता। जे तू इस ढंग नाल आहिस्ता आहिस्ता कोवें, सच नू सहजे उचारण करना पैंदा है,

और सच की है परमात्मा दा नाम, ये पहले जबान ते आवे तो जबान दे चों हड्डी निकलेगी, जबान दे चों सख्ती निकलेगी। ये हो नहीं सकदा, जिस जबान ते राम है उस जबान दे सख्ती होए, जिस जबान ते वाहेगुरु है उस जबान ते क्रोध होवे, ये हो ही नहीं सकदा। जहर इस गल दा सबूत है, अजे जबान ने अमृत दा रस नहीं माने। सख्ती इस गल दा सबूत है, इस जबान जबान नहीं रह गई, क्योंकि जबान दे च हड्डी नहीं आउंदी, जबान दे च सख्ती नहीं आउंदी, जबान दे च हड्डी आ गई है, ये मांस दा टुकड़ा ते बन के रह गई, जबान नहीं है। तिसका कुठा होवे सेख, लहू लब निखत्था वेख। परमात्मा दे नाम नु छोरा कह देता है गुरु नानक ने, ऐसा छोरा है को के रख देगा। छोरे ने कोना है तो निकलेगा कि निकलेगा काम, निकलेगा लोभ। एक कसाई छुरा फेरदा है बकरे थे, निकलदा खून। बाद देच आंदरा ओजरी कड़के परे सुटदा है। पर सच दे छुरे नाल जद किसे दा मन जबा होंदा है, लोभ निकल जांदा है, वासना निकल जांदी है, शुद्ध मास रह जांदा है, शुद्ध मन रह जांदा है। उसे नु कहंदे ने मन शुद्ध हो गया, मन पावन हो गया। सच की काथी सच सब सार, गाड़त तिसकी अपर अपार। तिसका कुठा होवे सेख, लहू लब निखत्ता वेख। ए शेख, जे इस छुरे दा किधरे तू जवा कीता होया मास खा लवे, परमात्मा ने कबूल कर लेना है, ईश्वर ने कबूल कर लेना है। खा मांस जरूर खा, पी शराब जरूर पी, पर केड़ी शराब? धन गुरु नानक देव जी महाराज की जिंदगी दे नाल बोल जुड़े ने, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम दी शराब पी, तो नाम शराब है। हां, नाम एक ऐसी शराब है और ऐसा सरूर तारी हो जाता है, सारे दुख मिट जाते हैं, सारे विकार निकल जाते हैं। बाहर दी शराब जितने जितने घुट अंदर जाएगी, वो शराब ही अंदर नहीं जा रही, विकार भी अंदर जा रहे हैं। शराबी कामी होवेगा, शराबी क्रोधी होवेगा, शराबी भोगी होवेगा, सारा अनर्थ शराब नाल जुड़ गया। बेशतर मुल्कां दे शराब पानी दी तरह पीती जा रही है, दुराचार आम हो गया, या इंज कह लो दुराचार दे बाजार, बाजार ही दुराचार दा रूप धारण कर गए। बिकदिया सन जिनसा किसे वक्त बाजार देच, कपड़ा बिकदा सी, सोना चांदी बिकदा सी, फल फूल बिकदे सन, पर ए बाजार अज मामूली रह गए ने। स्त्री दी असमत बिकदी है, इज्जत बिकदी है, इना बाजारां दी महिमा बहुत वड्डी हो गई। ए नाम मात्र कहलाण वाले क्लब, ए थिएटर और इस तरह दी आयाश दी दुनिया, वैश्याले सब असमत फिरोशी दे अड्डे। बिकदी है असमत स्त्री दी, बाजार देच हुण दुराचार बिकदा है, बाजार देच वस्तुआं नहीं। अगर कोई नाम दी शराब पी लवे, ई शराब किवें बनेगी? गुड़ कर ज्ञान, ध्यान कर मऊआ, पहु भाटी तन धारा, रब्बी भय दी भट्ठी बना, उहदे च रब्बी ज्ञान दा गुड़ पा, उहदे च रब्बी ध्यान दा मऊआ पा, मऊआ एक फुल, ते भय दी भट्ठी। मनुख समाज तो डरदा है, मनुख कानून तो डरदा है, मनुख परमात्मा तो नहीं डरदा। संकोचमई बिरती बना देंदा है,
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭੈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਭੈ, ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਾਂ, ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਪਰ ਪਾਪ ਉੱਥੇ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਹੈ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਪਰ ਗੁਨਾਹ ਉੱਥੇ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਅਗਰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬੀ ਭੈ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੈ ਦੀ ਤੂੰ ਭੱਠੀ ਬਣਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਪਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗੁੜ, ਇਹਦੇ ਚ ਪਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਊਆ। ਅੱਗ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਭੱਠੀ ਦੇ ਤੱਲੇ ਬਾਲਣੀ ਹੈ। ਦੁਇ ਪੁਰ ਜੋਰ ਰਸਾਈ ਪਾਠੀ, ਪੀਓ ਮਹਾਰਸ ਭਾਰੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੁਇ ਕੀਏ ਜਲੇਤਾ, ਛੂਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ। ਦੁਇ ਪੁਰ ਜੋੜ, ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੋੜ, ਇਹ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾ ਚੁੱਲਾ, ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਚੁੱਲਾ ਬਣਦਾ। ਸੁਰਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ, ਬਣਾ ਚੁੱਲਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਭੈ ਦੀ ਭੱਠੀ, ਪਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗੁੜ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਊਆ। ਥੱਲੇ ਬਾਲਣ ਕਿਹੜਾ ਡਾਣਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੋਇ ਕੀਏ ਜਲੇਤਾ, ਛੂਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ। ਕਾਮ ਦਾ ਈਂਧਨ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਈਂਧਨ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਬਾਲ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗੁੜ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਊਆ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਮ ਸੜਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਸੜਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਖਿਰ ਈਂਧਨ ਹੀ ਤੇ ਜਲਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਾਮ ਈਂਧਨ ਹੈ, ਜਲੇਗਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਈਂਧਨ ਹੈ, ਜਲੇਗਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਈਂਧਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਗ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਈਂਧਨ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਈਂਧਨ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਾਮਦ ਹੋਵੇ, ਈਂਧਨ ਉਦੋਂ ਬਰਬਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅੱਗ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਾੜ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੋਇ ਕੀਏ ਜਲੇਤਾ, ਛੂਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ। ਸੜ ਗਿਆ ਕ੍ਰੋਧ, ਸੜ ਗਿਆ ਕਾਮ। ਉਹ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗੁੜ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਊਆ ਸੀ, ਉਹ ਐਸਾ ਪੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ। ਤੋ ਪੁੱਛੀਏ ਕਬੀਰ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ, ਕੌਣ ਸਿਖਾਉਂਦਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਗੰਮਤ, ਸਤਗੁਰ ਤੇ ਸੁਧ ਪਾਈ, ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਤਾਸ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਉਚਕ ਨ ਕਬ ਹੋ ਜਾਈ। ਇਹ ਸਮਝ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਚੋਂ ਲੋਭ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਬੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬੋਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਿੱਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਜੇ ਆ ਜਾਏ ਭਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਮੂੜ ਹੈ, ਨਾਦਾਨ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਜ਼ਹਿਰ ਹਲਾ ਹਲ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਹਿਰ ਹਲਾ ਹਲ ਹੈ ਵਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਾਦਾਂ, ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਤੁਝਕੋ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਪੀਣੇ ਕੇ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਜਾਏ
तो काम रस भी राम रस हो सकता है। ते जे तेनू पीण दा ढंग नहीं आया तो राम रस भी काम रस दे बदल सकता है। जहर भी अमृत हो सकती है, अमृत भी जहर हो सकता है अगर तेनू पीण दा ढंग नहीं आया। संखिया जहर है पर हकीम मार के उसनू कुश्ता बना देंदा है। अमृत अंगूरां दा रस अमृत है, गन्ने दा रस अमृत है पर एक कलाल तरका के उसनू शराब बना देंदा है, कौड़ा बना देंदा है। मिठे नू कौड़ा कीता जा सकदा है, कौड़े नू मिठा कीता जा सकदा है, अमृत नू जहर बनाया जा सकदा है, जहर नू अमृत बनाया जा सकदा है। जिसने जहर नू अमृत बना लिया संत, और जिन्हें अमृत नू जहर बना लिया दुष्ट संसारी। तो यह दो तरह की जिंदगी मिलती है जगत दे, जहरमई अमृतमई। पर अमृत बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत ज्यादा विरले ने जिन्होंने संखिए का कुश्ता बनाया हो, बहुते ने जिन्होंने अंगूर की शराब बना ली, संतरे की शराब बना ली, मिठे गन्ने के रस की शराब बना ली। थोड़े ने जिन्होंने जिंदगी मिठास नाल भर दिता, बहुते ने जिन्होंने कुड़त्तन दे नाल अपने जीवन नो गर्क कर लिया, बहुत कौड़ा कर लिया, बहुत कौड़ा कर लिया। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने युग दे प्रभाव तो बचण वास्ते, क्योंकि युग ते कलाल है, शराब सजा के बैठा है, तो युग दे प्रभाव तो बचण लई ए पुरख तू सतसंग कर, सत दी विचार कर, सत दा चिंतन कर, ताकि युग दे प्रभाव तो तू बच सके, इस कलाली तो तेरी जान छुट सके, और तू ओ रस पीवे कि जगत दे सारे रस फिक्के पै जान, व्यर्थ हो जान। और इसे प्रथाई सतगुर ने पंक्ति उच्चारण की थी, बिखे बन फीका त्यागरी सखिए नाम महारस पियो। एक ही जहर तू पी रही है, अमृत पी, अमृत पी, अमृत पी, नाम रस अमृत है। और इसकी खूबी है इनू पींदे ही सारी जहर शरीर चो निकलती है, सारे फिक्के रस शरीर चो निकलते ने। सतगुर ए अवस्था हर एक दी बनावे।

0: अगर एक स्त्री स्त्री होंदे हो या पुरुष होना चाहे, पुरुष ते नहीं हो सकेगी, ढंग दी स्त्री भी नहीं बन सकेगी। पर एक पुरुष अगर स्त्री होना चाहे होंदा, श्रृंगार दिता है ना परमात्मा ने दाड़ा, और दाड़े दी अपनी सीमा होंदी है। मैं 40 साल तो देखदा इक इत्थे ही रुकया पिया है, एक अद्धा इंच भी अगे नहीं वधदा, इत्थे ही है। ते जिहड़े रोज जंग करदे ने कैंची छुरे लेके, उहनां दे ते मरदे दम तक वधदे ने, और वधदे वाल कह देंदे ने कितने तू छुरे लिया, कितनियां तू कैंचियां लिया, तेरियां सारियां खुंडियां कर देंगे मैं रवांगा, मरदे दम तक रहा। हुण मैं अर्ज करा, चूंकि विपरीत दी कोशिश है, स्त्री पुरुष वर्गा बनन दी कोशिश कर दी है, पुरुष स्त्री वर्गा, तो स्त्री नो सुहप्पन पुरुष देश दिखाई देंदा है, पुरुष नो सुहप्पन स्त्री दिखाई देंदा है। तो फिर की करे हुण पुरुष फिर स्त्री वर्गा बने, फिर चला जांदा है नाई दी दुकान ते, कहिंदा है उस्तरे ते कैंचियां नाल मेरा मुखड़ा इंज बना दे जिवें परमात्मा ने स्त्री दा बनाया, नारी दा बनाया, बनाया प्रभु ने वख वख है, स्त्री वर्गा बना दे। अज तक कोई मोर नाई दी दुकान ते नहीं गया, मेरे पंख कट दे ते मैनू मोरनी वर्गा बना दे। कोई शेर भी नहीं गया, मेरे गर्दन दे वाल कट दे ते मैनू शेरनी जैसा बना दे। कोई मुर्गा भी नहीं गया, मेरी कलगी कट दे, मेरी गर्दन दे पंख कट दे ते मैनू मुर्गी जैसा बना दे। ये मूर्खता सिर्फ मनुख ही करता है, पशु नहीं करता, पशु नहीं करता, मनुख करता है। मनुख नू ये श्रृंगार दिता है। मैं अर्ज करा, जिस दिन वाकई वेखण वाली अख होवेगी, दाड़े तो बिना चेहरा पुरुष दा नहीं चंगा लगेगा, नहीं चंगा लगेगा। हुण मैं हैरान हाँ, दाड़े वाला चेहरा स्त्री दा भी नहीं चंगा लगेगा। क्या पसंद करोगे स्त्री नू दाड़ी आवे मुछां आवन? ते मैरज करना जिन्हों नहीं आउंदियां, पुरुष जो नहीं आउंदियां दाड़ी ते मुछ, उन्हों खोदा कहंदे ने, ये ते खोदा है। और मैं हैरान होया कि रागी सिंह सी बड़ा सुंदर कीर्तन करदा सी, पर खोदा दाड़ा नहीं सी, कानपुर दा सी वासी, मुछा नहीं सन। 50-60 साल दा हो चलिया सी, हर शहर दे वैद हकीम नू कहिंदा सी कोई दवाई है, ए दाड़ा आ जाए, मुछा आ जाए, कीर्तन करदे आ गुरु दे दर ते चंगा नहीं लगदा मैं, ए शिंगार मेरे कोल नहीं। जगह जगह दवाई पुछदा सी। एक दिन किधरे मेरे कोल पुछ बैठा, मस्कीन जी सुने है कोई बाबा बलवंत सिंह नाल तुसी रहे हो ते निर्मले लोग दवाइयां दे बड़े ज्ञानी होंदे ने, तुसी शायद उन्हां कोल कोई नुक्सा सिखिया होवे, कोई ऐसी दवाई दाड़ा आ जाए। मैं कहा हद हो गई, जिन्हां नू दाड़ा नहीं आउंदा ओ दवाई लभदे ने, जिन्हां नू आ जांदा ओ नाई लभदे ने। ऐ नहीं समझ आउंदे, ऐ नहीं समझ आउंदे, खोदा मनुख नहीं चंगा लगता। परमात्मा ना दिता होया शिंगार है। हजरत ईसा मोहम्मद साहब तमाम ऋषि मुनि अवतारी पुरुष ऐ शिंगार है, उन्होंने स्त्री का एक शिंगार है, और पुरुष नालों इस मामले च बहुत अगे। जीव दे जागदे मनुख नू जन्म देना, यह मनुखता दे जन्मदाती है, मां है, बहुत वड्डी सौगात। इस वास्ते ऐलानिया गुरु नानक ने कह दिता, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा। अपनी महानता दा बोध ना होण कारण करके इस युग दे च स्त्री पुरुष दी नकल ते चल पई, पुरुष वर्गे कपड़े पहनण लग पई, पुरुष जैसी चाल चलन लग पई, पुरुष जैसा कद बनाना है, तो आप सुन के हैरान होवोगे 20% स्त्रियां अमेरिका दे शेव करांदियां, उन्हें दाढ़ी आ जाती है, नकल जो पुरुष की करनी है। इत्थे भी मैं देखा, सिख जगत दे भी देखा, जिहड़ियां बीबियां पुरुषां दी तरह कपड़े पहनदियां ने उन्हां नूं दाढ़ी आ जाती है, दाढ़ा आ जाता है। कपड़े जो मर्दां वाले पहने, पुरुषां वाले पहने, सजाया जो अपने मर्द की तरह, मर्द जैसा होना है। प्रभु ने तेनों स्त्री जैसा बनाया है, ते जद तन दा चोला तेरा अलग है तो शरीर दे वस्त्र भी अलग होंदे ने, पुरुष जैसे नहीं होंदे। जब तेरा तन अलग बनाया है तो तेरे तन दे कपड़े भी अलग होने चाहिए ने, पुरुष दा तन अलग बनाया है उहदे कपड़े अलग होने चाहिए। दोहां दे वस्त्र एक नहीं हो सकते क्योंकि दोहां दे तन एक नहीं है। बदकिस्मत ही है जद कोई स्त्री पुरुष की नकल से चल पैंदी है, पुरुष जैसा होना है, तो कई दफा प्रकृति सहायक हो जाती है, ठीक है तेनों पुरुष जैसा बनाते हैं। इस वास्ते मैं अर्ज करा, अगर एक स्त्री सारी जिंदगी पुरुष की कशिश दे जीवी है, मर के इनू अगला जन्म पुरुष का मिल जाएगा। अगर एक पुरुष आखिरी दमां तक स्त्री की कशिश दे जीवे है, मरण तो बाद अगला जन्म इसनों स्त्री का लाजमी मिलेगा। पुरुष हर जन्म पुरुष होवे ऐसा कोई लाजमी नहीं, स्त्री हर जन्म स्त्री होवे ऐसा कोई लाजमी नहीं। थोड़ी जिहा मात्रा का भेद है दोहां दे शरीर च, एक स्त्री एक पुरुष, पर कशिश विपरीत दी। इस विपरीत दी कशिश दे चां बड़ी प्रबल वासना प्रधान है, जिन्हों कहिंदे ने काम वासना गुस्ताखी मां। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का फैसला, छले कनक कामने, मनुख छलिया जांदा है कनक कामने। वो जो कामना चलती है, धन की कामना, प्रभुता की कामना, माण वड्याई प्रतिष्ठा की कामना, पदार्था की कामना, खाण पीण की कामना, फिर वक्ती तौर पर आके रुकती है स्त्री की कामना, कामने की कामना। तो स्त्री का नाम कामना पै जो है कामने ही पै गया, कामना की मणि, और पुरुष का नाम पै गया कामराज। कितनी भी सर्कल दे घूमती रवे स्त्री की वासना पुरुष से रुकती है, कितनी भी घूमती रवे वासना पुरुष की सर्कल दे स्त्री से रुकती है। पुरुख में नार, नार में पुरुखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। महाराज कहिंदे कलयुग ऐसा है, बस कामना प्रधान होके जी रहे ने, वासना प्रधान होके जी रहे ने, भावना प्रधान नहीं। अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे दे ले आईए, ये मनुख बाजार दे आया, फैक्ट्री दे आया, ऑफिस दे आया, मार्केट दे आया, किसी धार्मिक मंदिर दे नहीं आया, किसी गुरुद्वारे नहीं आया। अगर भावना करके आया है, भरोसे करके आया है, प्रभु ते भावना हो सकता है, अगर भावना नाल बैठा है तो यदि दुकान भी मंदिर बन जाए। ये भी मर्ज कर दें, वासना करके बैठा है तो गुरुद्वारा भी दुकान बन जाएगा, मार्केट बन जाएगा, बाजार बन जाएगा। बाजार दी हलचल, मार्केट दी बेईमानी और धंधे दी बेईमानी सारी धर्म विच आ जाएगी, क्योंकि वासना मलिन हो जाएगा धर्म। ये भी मैं अर्ज करते हैं, अगर धार्मिक कर्म में भावना वस ना होके कामना वस होके कर रहे हैं, तो कीर्तन भी धंधा, कथा भी धंधा, मथा टेकना भी धंधा, अखंड पाठ रखाना भी धंधा, पूजा पाठ रखाना भी धंधा, पर मैं भावना करके कर रहे हैं और भावना नाल मैं बाजार विच बैठा, तो यकीन जानो दुकान भी हरि मंदिर बन जाएगा। खड्डी ते कपड़ा बुनदिया बुनदिया खपीर प्रभु नाल जुड़ जाता है। चेले रोकते ने हुण ते कपड़ा ना बनो, थानू लोकी ब्रह्म ज्ञानी कहते ने, कहिंदे जद मैं कपड़ा बुनदा सी उदों तुसी मैनू कदी नहीं रोकिया, क्योंकि कपड़े बुनना सिर्फ मेरी रोजी सी, मेरा धंधा सी, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਕਰਮ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਧੀਨ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨੀ ਕਾਮਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਧੰਦਾ ਹੀ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੁਚ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ, ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚ ਜਾਣਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਜਾਣਾ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਚ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਇਹ ਮਨੋਕਾਮਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਇਹ ਮਨੋਕਾਮਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਾਹੋ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਂਚੇ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਰਾਜ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਈਏ? ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੋ ਮਿਲਨੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਜੇ ਕੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਜੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਆਤਮਕ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਿਹਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਵ ਬਾਈ, ਨਾਨਕ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਹਾਈ। ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਿਆ। ਕਿਧਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਧਰੇ ਪਿਤਾ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਧਰੇ ਦਾਦਾ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਧਰੇ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਧਰੇ ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਿਆ। ਕਿਧਰੇ ਪਤੀ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਧਰੇ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਦਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਤਨਾ ਮੈਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਨਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਬਣੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
2: ਸਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਬੇਸਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗਨ ਫਤੋਲੇ ਜਿਉਂ

पहला सब रस मिठे मनिए सुनिए सालोने खट तुरसी मुख बोलना मारण नाद किए छती अमृत भाव एक जा को नदर करे बाबा और खाना खुशी खुआर जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। जिंदगी दा लक्ष्य अगर असी लभीए आम दुनियावी मनुख दा आम संसारिक इंसान दा लक्ष्य की है, मनुख क्यों जी रहा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने दुनियावी मनुख दे लक्ष्य दा इस पावन पवित्र वाक देच बड़ा सुंदर चित्रण कीता है, तस्वीर कशी कीती है। आप फरमान कर देने दुनियावी मनुख संसारिक मनुख आम इंसान आद आदमी खान ले जी रहे है, पीण ले जी रहे है, पहनन ले जी रहे है, मनोरंजन ले जी रहे है, परिवार ले जी रहे है, परिवारिक खुशियां ले जी रहे है, और फिर जी रहे है सोण ले नींद। जीवन दा आखिर लक्ष्य की है, इस तो बिना होर कुछ लभना भी नहीं। खाना पीना पहनन जिंदगी दे चों कढ दई है। मनोरंजन दा सारा समान एक पासे कर दई है। परिवारिक खुशियां नूं बलाए ताकते रख दई है। ते नींद नूं भी एक पासे कर दई है। शायद मनुख अज ही खुदकशी कर लवे। आत्महत्या दी सोचे फिर मैं जीवां ही कौं, किस लई जीवां। जीवना आम दुनियावी मनुखता बस इसे लई है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दी जिंदगी देच इना तमाम वस्तुआं दी प्रधानता नहीं सी, ना खान दी, ना पीण दी, ना पहनण दी। परिवारिक कशिश भी नहीं सी, घरों निकले बारह बारह साल दी उदासी। जंगल दे रुखां थले होर मनोरंजन भी की हो सकदा सी, इंज कह लो सारे मनोरंजन नूं बलाए ताकते रखिया। किधरे मरुथल दा पेंडा, किधरे पहाड़ां ते भरमन सुमेर जोगियां कोल, किधरे तनहा बयाबान जंगलां देच रुखां दे थले वासा। जिसनों आम दुनियावी मनुख मनोरंजन कहिंदा है, एते गुरु नानक दे नेड़े ही नहीं गए। परिवारक खुशियां ते नींद, इस सब कुछ नो धन गुरु नानक देव जी महाराज ने बलाए ताक ते रख के दस दिता है। जीवन दा लक्ष्य सिर्फ एही नहीं है, जिंदगी दा मनोरथ सिर्फ एही नहीं है, कुछ और भी है। ए ठीक है कि इस सब कुछ तो बिना भी जीवना बड़ा औखा है, पर इस सब कुछ वास्ते जीवना भी कोई जीवना नहीं, ए जिंदगी भी कोई जिंदगी नहीं। पावन पवित्र श्री राग दा ए पाक, इस दिस चार पहरे ने, चार पदे ने, इंज कह लो चार पख ने। जीवन इना चारां ले ही बतीत हो रहे है। प्रथम खाना है, और खाना दुनियावी मनुख दी सिर्फ शरीरक लोड़ नहीं, मन दी सोच नहीं है, मन दा चिंतन है, विचारां दिच खाना है, सोचनी दिच भोजन है। उठदा बैठदा पे याद भोजन दी चल रही है, खान दी चल रही है, लोड़ है या नहीं, सवेरे तो शाम तक चिंतन इसे रही चलता है।
और चिंतन कर करके जद मनुख थके फिर पहनण दी सोचनी ते पहनण दी वक्ती पूर्ति तो बाद फिर मनोरंजन चाहिए कोई ना कोई दुनियावी मनोरंजन जिस नाल मन परचे और फिर परिवारक खुशियां चाहिए ने परिवारक सहमति चाहिए है और परिवार दे अपना होना इंज समझे जैसे परिवार दी लोड़ है और परिवारक खुशियां मेरे नाल जो है संबंधित ने और फिर इस सब कुछ नू हंडांदा भोगदया होया मनुख चाहुंदा हुण मैं सौ जावा हुण मैनूं चंगी नींद आवे हुण मैनूं गूढ़ी नींद आवे वाकई सब कुछ नू मनुख दी जिंदगी चो कढ दईए तो आम दुनियादार दी मनुख दी जिंदगी च कुछ रह भी नहीं जांदा कुछ बचदा भी नहीं। इस सब कुछ दी कशिश ना देख के माता तृप्ता जी ने एक दिन धन गुरु नानक देव जी महाराज नू साफ कह दिता ऐ मेरे पुत्र नानक जे तुसी किधरे घर रहो तो मैं सोने सोने पकवान बना के थानू खिलावा और थानू खांदे आया वेख के मैनू खुशी होवे मैनू प्रसन्नता होवे। सिर्फ खान दी ही गल क्यों मैं कीमती तो कीमती कपड़े लियावा और खुद सिला के थानू पहनावा। सिर्फ इतना ही क्यों सुंदर घोड़ी उस ते उत्ते मैं चांदी दी काठी पावा लगाम दे सोना जुड़िया होवे और ऐसी सुंदर घोड़ी असवारी लई होर तरह दे मनोरंजन दे साधन तरह तरह दे मैं थोड़े लई मुहैया करा। फिर थोड़ा एक परिवार है परिवारिक खुशियां माणो फिर सुख दी नींद सौवो। ए उसनु आख्या जा रहा है जो हर वक्त सुख दी नींद देच है हर वक्त आनंदी से जाते हर वक्त खेड़े ते खुशियां दे माहौल दे जो जी रहा है और जिसनु कहिंदे ने ब्रह्मानंद जो हर वक्त ब्रह्मानंद दे माहौल दे जी रहा है ए सारा सलाह मशवरा उसनु दिता जा रहा है। अक्सर ऐसा होया है कि जद किसे मनुख दी शिखर ते पहुंची है सुरत तो शिखर ते पहुंच के जो कुछ ओ बोले है वो दुनियादार

खास नहीं है। और जो खड देच बैठ के खड भरे बोल बोलदा रहे उहदे बोलां देच भी खड सी, जिथे उसका तन खड देच कलार सी, उसकी बोलनी भी खड नुमा सी, बोल भी बड़े नीवे, बोल भी बिल्कुल ही खड। और उन्हां बोलां नूं कोई मन लवे तो इंज है जिवें जिंदगी नूं किसे खड देच गिराउणा होवे, किसे गड्ढे दे सुटना होवे। तो इस तरह दे बोलां नूं परम पुरखां ने अणसुणा कर दिता, वांझी रह गई ए दुनिया उस महान बोलां तों। और इस तरह जगत दा पूर्ण तौर ते कल्याण अज तक नहीं हो सकया, नहीं ते कितने महापुरुष आए, कितने अवतार आए, लक्ष्य ते उन्हां दा एही सी कल्याण करना है, कल्याण करना है। खड देच जिंदगी बतीत करन वाला मनुख खड नाल ही मोह पा बैठा सी, गहरे गड्ढिया विच ही जीवन दा आदि हो गया सी, उन्हें शिखरां नूं छूना ही और शिखरां तक पहुंचना ही ए सुपना ही मन लिया, ए हकीकत नहीं हो सकदा, ए वास्तविक नहीं हो सकदा, इस वास्ते सोचना ही बंद कर दिता। माता तृप्ता जी ने जद आख्या है, लाल जी कितने तरह तरह दे पदार्थ ने, मैं बनावा तुसी खाओ, मैनू खुशी होवे तुसी आनंद माणो। तो सतगुरु कहंदे ने मां जी फिर थानू आनंद ही माणना चाहिदा है, ऐसा केड़ा पदार्थ है कि मैं नहीं छकदा। तृप्ता जी कहण लगिया, मैं ते मरदाने तो सुनिया है कई कई दिन तक बार भोजन नसीब नहीं होंदा, कई कई दिन बिना खाणिया दे ही लंघ जांदे ने। और खाना पहल है, खाना अवल है, इतनी गल स्पष्ट है कि चार दिन दा जो भुखा मनुख है उसका मनोरंजन नाल संबंध टूट जाएगा, परिवारिक खुशियां नाल संबंध टूट जाएगा, की पहनना है और किस ढंग नाल पहनना है इसकी चाहत भी मिट जाएगी। हर तरह की चाहत नूं भुख खत्म कर देंदी है, भुख इक्को ही चाहत रखती है कि सिर्फ भुख मिटे, मेरी पूर्ति होवे। तो ए सब तो प्रथम है, भुखे मनुख लई मनोरंजन बेमैनी है, परिवार खुशियां बेमैनी ने, तरह तरह के वस्त्रां दा पहनना बिल्कुल बेमैनी है। तो खाना पहले है, और ए गल स्पष्ट है कि बहुत सारी दुनिया खाण लई जी रही है, सारे दा सारा पशु उन्हां दी जिंदगी दे उत्ते पैनणा है ही नहीं, उन्हां दी जिंदगी दे उत्ते परिवारक खुशियां है ही नहीं, सारे पशु खाण लई जी रहे ने और की है। पशु जगत सिर्फ खाण लई जी रहे है, पंछियां दा जगत सिर्फ खाण लई जी रहे है, चौपाए जानवरां दा जगत सिर्फ खाण लई जी रहे है। अगर उन्हां दी कोई सोचनी है ते कम करदी है तो सिर्फ खाण लई कम करदी है, और सारी भज दौड़ खाने दी तलाश है, रिजक दी तलाश है, खुराक दी तलाश है, और कुछ नहीं। और गजब दी गल है कि पशु खांदिया खांदिया रजदा भी नहीं, खाई जांदा है, खाई जांदा है, क्योंकि होर कोई लक्ष्य ही नहीं कि थोड़ा जिहा लक्ष्य नूं बदले। मनुख दे खाण दे नाल नाल कुछ पहनना भी है, पहनण दे नाल नाल कुछ मनोरंजन भी है, मनोरंजन दे नाल नाल कुछ परिवारक खुशियां भी ने। तो इस तरीके नाल मनुख दी जिंदगी थोड़ी वंडी जांदी है, बिखर जांदी है। पशु कोल सिवाए खाने तो होर कुछ नहीं, तो चूंके खाना ही लक्ष्य है ते खाण तो इलावा होर कुछ है नहीं, इस वास्ते पशु अक्सर अधिक खा जांदे ने, ज्यादा खा जांदे ने, बहुत खा जांदे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज माता तृप्ता जी नूं समझांदे ने, मां जी मैं तरह तरह दे पकवान रोज खाना, केड़े? तो आप कहंदे ने, सब रस मिठे मनिए, सुनिए सालोणे। मां जो मैं परमात्मा दा नाम मन लिया और मेरा भरोसा जो उस ईश्वर दे नाम विच जम गया है, बैठ गया है,

प्रभु चिंतन नाल हल कीते, आत्म अभ्यास नाल जो है हल कीते। करीबन करीबन इस देश दे राज घरानियां दे चों धर्म दी सुगंध फैली, धनाढ़ मनुख प्रभु दे मार्ग ते चले, और जद धनाढ़ चल पैन, सताधारी चल पैन, तो दूसरा वर्ग उन्हां दे पिछे चल पैंदा है। स्वभावक है, अक्सर छोटा वड्डे दी नकल करता है, निर्धन धनवान दी रीस करता है। तो जो थोड़े जिया भी तलते पछड़े सन, दरम्याने सन, उन्होंने राजघरानिया दे ए जो राजकुमार सन, इन्हां दी नकल की थी, राजिया दी नकल की थी, राजे जोगी बन रहे ने, राजकुमार संत बन रहे ने। तो इस देश दे ऐसी हवा चली, घर घर दे देवी, घर घर दे देवता, गली गली दे संत, और अज तक वो पुरानी हवा दे कुछ झोंके मौजूद ने कि सारी दुनिया च अज भी कहंदे ने हिंदुस्तान एक धार्मिक देश है, हिंदुस्तान देवी देवतावां दा देश है, हिंदुस्तान गुरु पीर पैगंबरां दा देश है, जोगियां दा देश है, आत्म ज्ञानियां दा देश है। पर ए आत्म ज्ञानियां दा देश सी, अज नहीं। ए ऋषि मुनियां दा घराना सी, अज नहीं। संपन्न लोगां ने अपना पूरा समा, अपनी पूरी शक्ति आत्म अभ्यास दे खर्च की थी, तो सहजे सहजे की होया, धन दी फिक्र ना की थी, संपदा दी फिक्र ना की थी। संत पैदा होंदे गए, ऋषि मुनि पैदा होंदे गए, अवतार पीर पैगंबर पैदा होंदे गए, तो धन संपदा दी ते फिक्र ना की थी, मुफलसी भी पैदा होंदी गई, और मुफलसी चरम सीमा ते पहुंच गई। और अज असी देखदे आं कि हिंदुस्तान अज उना देशां दी तरफ निगाह करदा है जिथे संपन्नता है, ते जिथे संपन्नता आ गई है वो आत्म अभ्यास लई हिंदुस्तान दे दरवाजे खटखटा रहे ने, वो योगियां दे आश्रम लभ रहे ने, वो आत्म अभ्यास दे केंद्र लभ रहे ने। संपन्न हो गया अमेरिका, योगी शब्द दी उत्थे महिमा वध गई है, योग दी महानता वध गई है, आत्म अभ्यास दी उमंग ते तरंग वध गई है, लेकिन धन संपदा दी तरंग ते उमंग हिंदुस्तान दे च वध गई है। अज धन दी खातर इस देश दे च धर्म नू छोड़िया जा सकदा है, पर उस देश दे च ऐसा है कि धर्म दी खातर धन नू छोड़िया जा सकदा है। संपन्न घरानिया दे बच्चे हिपी बन गए, छोड़ गए सारे ऐशो आराम नू, हर तरह दे सुख नू, और उन्होंने बुलंद बांग कह दिता आत्मक चैन चाहिए, सुकून चाहिए, शांति चाहिए, प्रभु चाहिए, आत्म प्रकाश चाहिए। तो खैर जैसे जैसे शरीर दा मसला हल होवे, मन बड़े भयंकर रूप दे सामने आउंदा है, और शरीर पहले इदा मसला पहले हल करना पैंदा है, और इदा मसला है खाना पीना पहनना। पर ए संजम दे च ना होवे तो खाना पीना भी तन नू रोगी कर देगा, मन नू विकारी कर देगा, ए पहनना अगर संजम दे च ना होवे, मर्यादा दे च ना होवे, तो ए भी तन नू रोगी कर देगा, मन नू विकारी कर देगा। और तन दिया सारियां लोड़ां पूरियां हो जान, ते मन जद बड़े भयंकर रूप दे सामने आवे, तो हुण इस मन दी वास्तविक लोड़ की है। करीबन करीबन दुनिया दे अजोके सियाने मनुखा ने ऐसा समझ लिया, मनोरंजन मन दी लोड़ है, नाटक चेटक तरह तरह दे रंग तमाशे रंगीनिया, इस तरह दे मनोरंजन दे साधन संपन्न घरानिया दे नवे तो नवे पैदा हो रहे ने। लेकिन मन दी एक अपनी एक अवस्था है, जिस चीज नू एक दफा वेख लवे ओनू पुराना कर देंदा है, ते पुराने दी मन परिक्रमा नहीं करदा, मन अगे जांदा है, मन गतिमान है, इदी गति बड़ी तीक्ष्ण है, और ए रुकदा नहीं, ए लंघ जांदा है, और लंघ के हर चीज नू पुराना कर देंदा है, हर वस्तु नू पुराना कर देंदा है। रंग पुराने हो जांदे ने, रूप पुराने हो जांदे ने,

है तो सिर्फ धर्म दा बड़ी रौनक है थिएटरां दे क्लबां दे अयाशी दे अड्डियां दे जुए खानियां दे मैखानियां दे बड़ी रौनक रास्ते सुनसान नजर आते हैं कारण यह रस्ता पहाड़ी रस्ता है चढ़ाई दा रस्ता है ते हर बंदा चढ़ाइयां ते नहीं चढ़ सकदा चाहे शरीर करके चढ़ना होवे तां भी कठिन है चाहे सुरत करके चढ़ना होवे तां भी कठिन है धर्म दा मार्ग है सुरत नूं उच्चा करना छाया दुनियावी सुख ते जमीन ते भी मिल जाणगे क्योंकि दरखत दी छां जमीन ते उच्चा उठण दी लोड़ नहीं धनवान बनन लई लाजमी नहीं है कि कोई संतोखी भी बने तिया पुत्र की प्राप्ति करने लई लाजमी नहीं कि कोई जप तप भी करे तिया पुत्र ते पशु पक्षियों के भी आते ने औलाद ते उन्हां दी भी आती है सार किताबली का करता कहिंदा है निंद्रा आलस भोग भय ए पस पुरख समान नरन ज्ञान निज अधिकता ज्ञान बिना पशु जान रब्बी ज्ञान तो बिना मनुख की भुगत है कुछ भी नहीं तो खैर मैं अर्ज करा मनुख दे प्राणा दे प्यास ते ऐसी है कि ऐसा सुख मिले जिड़ा दुख दे ना बदले उसे नु आनंद कहंदे ने ऐसा जीवन मिले जो मौत दे ना बदले उसे नु आनंद कहंदे ने ऐसा सुहपन मिले जो करूपता दे ना बदले उसे नु आनंद कहंदे ने और ऐसा नफा झोली दे पवे जो नुकसान दिच ना बदले उसे नु आनंद कहंदे ने आनंद आनंद सबको कहे आनंद गुरु ते जानिया मैं फिर अर्ज करा सुख पदार्थां तो भी मिल जांदा है आनंद परमात्मा तो मिलेगा सुख परिवार तो भी मिल सकता है आनंद निरंकार तो मिलेगा और आनंद की है ये जो मनुख दे प्राणा दिच प्यास है ऐसी जिंदगी मिले जो मौत दिच ना बदले ऐसी जवानी मिले जो बुढ़ेपे दिच ना बदले ऐसा सुख मिले जो दुख दिच ना बदले ऐसी इज्जत मिले जिदे थले बेइज्जती बिल्कुल ना होवे ऐसियां खुशियां मिलन जिदे पिछे गम बिल्कुल ना होवे बस इसे नु आनंद कहंदे ने आनंद दे च की है गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने नानक बद्धा घर तहां जिथे मिरत ना जन्म जरा जमना नहीं है मरना नहीं है बुढ़ेपा नहीं है इस तरह की तर्ज जिंदगी नहीं है उत्थे खैर मुख्तसर हुण अर्ज करा आनंद की प्राप्ति का वसीला जप ते जप उसनों कहंदे ने ये रसना किसी एक शब्द नू बार बार रटन करे बार बार वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु ये मंत्र उतना ही आंदा है करीबन करीबन जितनी देर दे असी श्वास ग्रास लेंदे हैं बस उतनी इसकी जो है गति है उतनी ची अपने आप पूरा हो जाता है इनू श्वास ग्रास दे पूरा नहीं करना ये आपे ही पूरा हो जाता है उतने ची वाहे गुरु वाहे गुरु इस्लामी मंत्र भी ऐसा है अल्लाह हो इसे ची पूरा हो जाता है मैं देख रहा सूफी मुसलमान फकीर ऐसा ही जपदे अल्लाह हो बिल्कुल गति यही रहती है और सहजे सरलता दे नाल मनुख जितनी देर दे श्वास ग्रास लेंदा है ते वाहे गुरु पूरा हो जाता है इसनू रटी जाना है ये गल वखरी है कि तार्किक बंदा कह देगा ते पुनरुक्ति है इति रिपीटेशन है एवें बार बार दुराई जाओ बच्चों की तरह मैनू एक बड़े स्याणे बंदे ने ते दिल्ली कह भी दिता सी कहन लगा ज्ञानी जी गुरु ग्रंथ साहब दे च रेपीटेशन है पुनरुक्ति है ते मैनू कहन लगे मैं थोड़िया दो चार नजमां पंजाबी दियां उर्दू दियां सुनिया ने किसे कोलों

옳다는 걸 원칭지 말아 하이다. 혹은 렛 베아리 모지코 시크 베아라나 दरअसल सिख का स्वरूप ही ता बनता है जे उस को रहनी हो गए। रहनी दो तरह की, मानसिक ते शरीरक। मानसिक रहनी है बाणी का पाठ, जपजी साहब, जाप साहब, सवैये चौपाई, आनंद साहब, और जितनी बाणी पढ़ सके। मूल मंत्र का जप एक ओंकार तो लेके गुरप्रसाद तक, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु मंत्र का जप दो वक्त, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या जितना उस को समय, ये मानसिक रहत है। तन दुते पंच ककार ये शरीरक रहत है। मन करके सिख बने, तन करके ये सिख बने, तो मानसिक ते शरीरक रहत चाहिए। ना मानसिक रहत होवे ना शरीरक, तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने ए सिख मैनू प्यारा ने, क्योंकि इसने पाहुल नहीं ली और रहनी नहीं रखी। धरे केस पाहुल बिना देखी मूरख सिख, तिसको दर्शन ना है मेरा पापी त्यागे बिख। रहत नामे इस तरह के बोल ने, ज्यों काहूं पे गधा नवायो फूल माल ताए मूंड धरायो। जिमें कोई खोते नू इशनान करा के उदे गल विच फुलां दी माला पावे और उदे शरीर दिते चंदन इत्यादिक लावे, ज्यों काहूं पे गधा नवायो फूल माल ताए मूंड धरायो, तैंकी कर ताकी शोभा नाही हासी होय होत जग माही। अगर इस तरह करके कोई खोते नू बाजार विच ले आवे, लोकी उसनु वड्याण नहीं लगे बल्कि हसनगे उसते, भई लै खोते नू इशनान करा के चंदन ला के गले विच फुलां दी माला पवा के लैके आ गया। तैंकी कर ताकी शोभा नाही हासी होए होत जग माही। ये प्रमाण किस प्रथाई दिता जा रहा है, अगां फरमान कर देने, तिम कुरतियन केस रखाए कहो कैसे ओ शोभा पाए। इसे तरह जो कुरैती है उसने केस रखे हुए ने, मानो खोते नु इशनान कराया गया, फुलां दी माला पवाई गई है, चंदन आदक लाया गया, बस खोते ही रख होता है। सिर्फ सिर्फ केस ने ना मानसिक रहत ना बाकी शरीरक रहत। भाई साहब भाई नंदलाल दा बड़ा सुंदर प्रमाण, निशाने सिखी ई पंज हरफ का, जिथे हृदय दी बनावट बनेगी बाणी नाल, मूल मंत्र दे जप नाल, गुरमंत्र दे जप नाल, उथे शरीर सिखी दा स्वरूप पेश करेगा। इना पंच ककारा नाल, कक्का के